0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: मंगलवार 9 जून की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 5:04 हो रहे हैं. जब भी आपका दिल उदास हो ना, तो बस रेडियो मस्ती के हम सफ़र बन जाए. आपका दिल जो है एकदम यानी कि खुश हो जाएगा. विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग. आप सबको नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. और कल बापरे बाप इतनी ठंड लगी, आज भी है ना सुबह सुबह, अब ऐसा लग रहा है कि सर्दी आ गई है. बट यू नेवर नो कब मौसम बदल जाए, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तेज हवाएं. लेकिन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और हम आपका ख्याल रखते हैं गानों के जरिए. सो वेलकम एंड स्वागत है आपका आपके इस राज एंड शाइन में सुबह के 7 बजे तक आपके मैसेजेस के जरिए ऑन 5499 1294.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जो आपके दिल को पसंद हो वो ही गाने हम चलाएं. And really hope आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. Thank you so much. So आपके messages on Sankat Nav Nav Dos Navkat. Pranam Radio Musti and Saj से आप hospital से जुड़े हुए हैं. Thank you. आप हैं मिस्टर जयशन, जीवन, उमीरा, नंगोटिया, आकाश, शर्वन, रामदेव, मैं विन आपके लिए, मिस्टर पूरे परिवार के लिए, आपके सभी दोस्तों को बों को आश विश करना चाहेंगे. प्रणाम आपको जी. आप हैं कौन यहाँ पर मैं देख रही हूँ. ओके इंडीड इट्स वेरी कोल्ड. यस और सर्दी जो है अब उसका असर लगने लगा है, पड़ने लगा है. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. एंड आपको भी प्रणाम भाई सूरज शर्मा एंड सजादा परिवार. कैसे हैं शीला जी फ्रॉम लेस्पेरेंस ट्रेबुशे. राम राम आपको. रेडियो मस्ती टीम गुड मॉर्निंग आपको. अब्दुल एंड सायरा बानू रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. एंड कुमार एंड देवीचंद फैमिली साथ देने के लिए थैंक यू दोस्त. एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू एज यूजुअल धीरज, आयुष, साथ में विधि शाह, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार मौदाबे से. एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू ज्योति. शादो बिनागत से है अगला गाना आपके पूरे परिवार, खास आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मदर परिवार हमारे लिए भी थैंक यू. बस ऐसे ही प्यार से साथ निभाते रहिएगा ऑन 5499 1294.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: उम्मीद फिल्म का सदाबहार गाना अभी आपने सुना रफी साहब की आवाज में. 5:18. Going to work. Bon courage as usual. सुबह से अपना ख्याल रखिएगा. और कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है. तो जो भी हुआ होगा कल या फिर परसों, जो भी हुआ होगा उनको भूल जाए. भूल तो नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने का नाम तो है जिंदगी. सो आगे बढ़ते चले विद गुड एंड पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे अच्छे गानों के साथ. ऑन 5499 1294 यहाँ पर वेदना एंड विशाल और बस मम्मी पापा बन गए हैं वंस अगेन. तो क्या बात है, चांदनी जी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एंड बेबी को वेलकम कहेंगे. बस खुश रहिए, सलामत रहिए, यही आशा करते हैं. हैप्पी बर्थडे टू बेस्टी रंगीता सीना तोबी ऑफ सेंट जूलियन विलेज. ब्लेसिंग्स फ्रॉम फ्रेंड सविता एंड आपके सभी डियर वंस की तरफ से. लवली गाने इन द वॉइसेस ऑफ लता जी एंड मुकेश.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 5:33 हो रही है. थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप. वंस अगेन बॉन कुराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. नमस्कार जी. गाना गुजार टू यू सरवना नामुगम. आज आप 20 साल के हुए हैं. सो तिरियोवादी अज अगेन कमलम नाइक एंड फैमिली फ्रेंड्स एंड डियर वंस मेबर्ग की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. इनोसेंट पीपल आर नॉट स्टूपिड, दे जस्ट थिंक एवरीवन हैज अ गुड हार्ट. यही तो है बुरी बात सही बात जो भी हो. अच्छे लोगों को लगता है कि सब कोई अच्छा होता है. बस आप अच्छाई के रास्ते पर चलते रहें और अच्छाई हमेशा आपके साथ होता रहेगा. भले ही कोई आपके भला के बारे में भला सोचे बुरा सोचे, आप हमेशा भला ही सोचते रहें और देखिएगा आपकी ज़िंदगी आपका जीवन कितना खूबसूरत बन जाएगा. प्रणाम दिव्या यहाँ पर. जय हनुमान मेरी बहन. ओके आप मिला रामदिकल मोजा ब्लॉन्च से यहाँ पर. तो नीतू आपके साथ हैं जी, और वो भी सुबह के 7 बजे तक आपके मैसेजेस के ज़रिए.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सौबात की एक बात कल की सरा बाहर एवरग्रीन सॉन्ग्स आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं. दैट वाज फकीरा लता जी की आवाज़ में. और बस ऐसे ही मस्त सरा बाहर एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है. 5:40 हो रही है. थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप. वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी फ्रॉम शांचिली मुका. और आज आपके बेटे आए, आपके नेफ्यू हैं अभी गोवर्धन जो रहते हैं कहाँ वाले, ओके उनका हैप्पी बर्थडे है. तो मामा जयश्री, पापा सोमदत्त, भाई आयुष, सब परिवार की तरफ से, रेडियो मस्ती टीम की तरफ से भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं. कैथोबोन से है कौन यहाँ पर, सरोज, राजन, मोनिका, पूनम, श्रेया, उमेश, अर्शी एंड बस ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज. आप कहते हैं कि दूसरा आदमी फिल्म आप देखने गई थी, ओ सिनेमा में, हॉल में, क्या बात है, यादें उभर गई है ना.

0: देखा जाए हम भी तो शायर नहीं, लेकिन हाँ हमारे दिल में जो छुपे फीलिंग्स होते हैं, जज्बात होते हैं, उनकी वजह से हम कुछ ना कुछ बयां जरूर कर जाते हैं, होठों से नहीं लेकिन आंखों से ही सही। अभी के लिए टाइम हो गया है कि हम आपको बताएं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: And as usual, शुरुआत आपके साथ।
2: एरीज मेष राशि।
0: आज का दिन आपके जीवन में नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। सुबह से ही मन खुश रहेगा, अच्छे समाचार आपको उत्साहित कराएंगे। करियर में कोई शानदार मौका मिल सकता है जिससे भविष्य यानी कि फ्यूचर को लेकर आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा एंड फैमिली का माहौल भी सुकून देगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: मेहनत ज्यादा रहेगी लेकिन यही मेहनत आने वाले समय में बड़ा फायदा भी दिलाएगी। बिजनेस में नए आइडियाज या फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सही समय है। आपकी प्लानिंग और समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी। आर्थिक मामलों में भी कुछ अच्छे संकेत हैं और निवेश से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: वेल, आज आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। अतिरिक्त आय या फिर नई कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। खर्चों को लेकर काफी समझदारी दिखाएंगे जिससे बचत भी बढ़ेगी, लेकिन बातचीत में थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि आपकी छोटी सी बात किसी को गलत भी लग सकती है एंड जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है आज आपको। ऑफिस या बिजनेस में आपके काम की तारीफ होगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। वैसे परिवार की कोई पुरानी परेशानी दूर हो सकती है एंड निवेश का नया अवसर सामने आ सकता है, बट अपनी निजी बातें ऑफिस में शेयर बिल्कुल ना करें।
2: लियो सिंह राशि।
0: आज हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। काम को टालने की आदत मुश्किल बढ़ा सकती है, दैट्स व्हाई समय पर जिम्मेदारियां पूरी करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ऑफिस में जो टीम वर्क से आपको अच्छा फायदा मिलेगा।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: आज का दिन थोड़ा उलझनों से भरा रह सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप सब संभालेंगे। नया काम शुरू करने का विचार मन में आएगा, लेकिन अगर मन में संशय हो, अगर कोई डाउट हो तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फैमिली आपकी पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी होनी चाहिए। घर में कोई खुश समाचार, शुभ समाचार या फिर कोई नए सदस्य के आने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
2: लिब्रा तुला राशि।
0: वल, आज सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रुका हुआ काम पूरा होने से मन को राहत मिलेगी। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। किसी दूर के रिश्तेदार से मुलाकात या बातचीत दिल को खुशी दे सकती है। वैसे नौकरी बदलने या नए अवसर की खबर आपका दिन बना भी सकती है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: ऑलराइट, आज नई ऊर्जा नई शुरुआत आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती है। कुछ नया करने का जोश बना रहेगा और उसका फायदा भी मिलेगा। नया वाहन या कोई बड़ी खरीदारी होने के योग है। बड़ों

0: के साथ धार्मिक यात्रा मन को शांति दे सकती है। ऑफिस में वरिष्ठों से तालमेल बनाकर रखें, क्योंकि छोटी बात विवाद का रूप भी ले सकती है एंड पुराने दोस्तों से मुलाकात दिल को खुश कर देंगी।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज ना सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी तो जरूरी बरतनी होगी। काम के साथ आराम और सही खान पान पर ध्यान दें। मौसम का असर शरीर पर महसूस हो सकता है।

0: इससे आसानी से हल भी हो सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज का दिन मिला जुला रहेगा, लेकिन आपकी समझदारी हर मुश्किल आसान कर देगी। कोई पुरानी बात सामने आने से थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है। परिवार का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। करियर में नई जिम्मेदारी या नौकरी का नया अवसर मिल सकता है। पेट से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज ना करें और बेवजह की अफवाहें से आप दूरी बनाए रखें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: प्रगति की राह पर आपके कदम और मजबूत होंगे। परिवार या संतान की ओर से कोई खुशखबरी मन को उत्साहित करेगी। घर के मामलों को बैठकर सुलझाने से रिश्ते और मजबूत होंगे। स्टूडेंट्स को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: लास्ट में आज आपके कामों को नई दिशा मिलेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी और आप पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी की ओर से मिला कोई सरप्राइज आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। पुरानी सेहत की समस्या जो है थोड़ी परेशान दे सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। एंड नौकरी में मनपसंद काम मिलने से संतोष और खुशी दोनों आपको महसूस होंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: इसलिए तो हमेशा कहते हैं छोटी सोच मत रखिएगा, अपनी सोच को बड़ी रखिएगा. एंड हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बात करती है ना. जो आप सोचते हो वही आपकी जो मुंह से बातें निकलती हैं वही हम कर्म करते हैं. जो अच्छा करो अच्छा सोचो. 5:55 छः बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. हेलो नीतू, नमस्ते नमस्ते इंदिरा, रेशमा, विमा, लंजू, कृषा, केशव, नील, माशा, तान्या, मोता ब्लॉश से प्रणाम आपको. मिस्टर संजय बंधु फ्रॉम सेंट जूनियर विलेज और जीवन यानी कि रेडियो मस्ती हमारा जीवन साथी, थैंक यू सो मच बंधु परिवार के लिए. फ्रॉम लालमाची एंड दोस्त फ्रॉम सेंट जूनियर विलेज एंड थैंक यू सो मच मिस्टर टोनी. गाने आपको अच्छे लगे एंड ये भी गाना आपके नाम नानी उमा, मामू शुभम, मौसी जया. चलिए जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं आज रघुजना परिवार फ्रॉम क्रिविया दिख रहे हैं और स्पेशली फॉर यू माय डियर दूती का

0: time to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: 6 बजे हैं। सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे भी धीमा। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक नया मेकानिज्म लागू करने पर विचार कर रही है। आईसीटी मंत्रालय इस संबंध में जल्द ही परामर्श शुरू करेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी जानकारी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हानिकारक सामग्री पर रोक लगाना है। कई महीनों तक चले देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल का नागरिक संवाद चरण प्लेंदेपापाए में समाप्त हो गया। 1200 से अधिक लोगों ने देश के भविष्य को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए। मंत्री ज्योति जीतन ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। अब इन सुझावों के आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उन पर कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोप थे। बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जांच में हस्तक्षेप और अत्यधिक देरी का आरोप लगाया था। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में प्रभावित युवतियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत परामर्श, घर पर निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाता है। पोर्टलुई स्थित एक आश्रय केंद्र मनोवैज्ञानिक सहायता, समूह चिकित्सा तथा पढ़ाई दोबारा शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहयोग देता है। वहीं 2025 से स्कूलों में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और कम उम्र में गर्भधारण को रोका जा सके। और विदेश में ईरान और इजराइल का कहना है कि वे हमलों को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम का फिर से उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन दूर होता जा रहा है। कभी कभार पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी, अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कभी कभार वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30।

ये जो प्यार है आपके लिए वो कभी कम ना होगा. थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए. लेट मी विश हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंस नाहर दुमन ऑफ फ्लाक स्वराज सीमा रविश प्रीशा लवशा एंड ग्रेट 10 स्टूडेंट्स. आपके सभी दोस्त परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. 10:06 विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग. जितने भी लोग इस वक्त रास्ते पर हैं प्लीज ड्राइव केयरफुली. एज यूजुअली हमेशा विश करते हैं आपको बों कुहाश. हैव अ सेफ जर्नी. प्लीज ड्राइव केयरफुली. बी वेरी केयरफुल. एंड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते करते आप अपने जो मंजिल हैं वहां तक पहुंचते चले. स्वीटी कैसी है माय डियर फ्रॉम पॉजिटिव फ्लाक. चलिए रोमांटिक गाने आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए भी. इक्वली गुड आउट टू कॉलीग्स टीचर्स रूशी विमी सिमी दिशिता सलमा रूही जी आशले रवि ललिता जीतन फैमिली पोर्टविस्ट से हैं आप. चलिए सबको बों कुहाश एंड बस मोड को एकदम खुशगवार बनाते चले. हंसते मुस्कुराते रहे. और भी बातें कहनी है आपको मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप के जरिए 5499129 पर.

0: and 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. More info on Canopy stores and tell shops and canopy.com.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: शिवश करा 19 मिनट गुड मॉर्निंग हेमा बस आपके लिए आपके पूरे परिवार के नाम विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप यहाँ पर रेखा साथ दे रही है थैंक यू माय डियर एंड अमृता फ्रॉम पुएतो साबल हाय अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू बर्थ डे विशेस टू खुम अंकल जयसिंह ऑफ गॉम्बे एंड आज 60 ईयर्स के हुए हैं सो अंकल जयसिंह आपको बधाइयाँ और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुड मॉर्निंग आपको आकाश एंड मनसुख फैमिली 90s के फैन हैं आप तो चलिए आपके लिए पूरे परिवार के नाम

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: दिल को मनाना इतना आसान काम है नहीं, हाँ, लेकिन क्या करें, दिल को मनाना आना चाहिए. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. कैसी हैं आप? बदवक विदेशी जी फ्रॉम तयाक पूरे परिवार के नाम. तो रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहे 7 बजे के बाद बेदिता के संग. वंस अगेन मॉर्निंग बीट. हैव अ नाइस डे अहेड.

0: नमस्कार, मंगलवार 9 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक नया मेकानिज्म लागू करने पर विचार कर रही है। कई महीनों तक चले देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल का नागरिक संवाद चरण प्लेंदे पपाए में समाप्त हो गया। 1200 से अधिक लोगों ने देश के भविष्य को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए। मंत्री ज्योति जितन ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। अब इन सुझावों के आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उन पर कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोप थे। बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जांच में हस्तक्षेप और अत्यधिक देरी का आरोप लगाया था। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में प्रभावित युवतियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत परामर्श, घर पर निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाता है। और विदेश में ईरान और इसराइल का कहना है कि वे हमलों को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम का फिर से उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पेशाब समाचार विस्तार से। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। आईसीटी मंत्रालय जल्द ही प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक मेकानिज्म स्थापित करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के साथ परामर्श शुरू करेगा। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन दुर्व्यवहार से निपटना है, विशेष रूप से गलत सूचनाओं के प्रसार, पहचान की चोरी और साथ ही मान हानिकारक, घृणास्पद या हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकना है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन घोटालों, धोखाधड़ी और अवैध सामग्री के प्रसार का मुकाबला करना भी है, जिसमें नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल को सुनते हैं, जिनसे बात की लुविना सुफी ने, विवरण रजनी भी कर का है।
1: मंत्री अविनाश राम तोहल ने कहा, हमें अपने बच्चों, बुजुर्गों की रक्षा करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। साथ ही हमारे साइबर स्पेस को भी सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम निवेशकों को आकर्षित कर सकें। कुछ लोग फेक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सही बात नहीं है। आईसीटी एक्ट के सेक्शन 46 के अंतर्गत ऐसा करना नहीं किया जा सकता, फिर भी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी ऐसी सरकार नहीं है कि व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखें। अभिभावकों को चाइल्ड ऑनलाइन के जरिए कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं तो ये वेरिफाइड तरीके से हों।

0: फेसबुक में ये सेवा उपलब्ध है, आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है ताकि ज्यादा भरोसा हो जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन गतिविधियां कर रहा हो। लेकिन मॉरिशस में बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं है।
1: जबकि कुछ लोग इसे गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के जोखिम के रूप में देखते हैं, वहीं मंत्री अविनाश राम तोहर इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनको सुनते हैं।
0: आज हम नोट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी तब समाप्त होती है जब किसी अन्य व्यक्ति का निजी जीवन शुरू होता है। इस पर कई तरह के एनक्रोचमेंट हुए हैं। दोनों ही अधिकार संविधान के अंतर्गत आते हैं और ये एक बैंसिक एक्ट है जो प्रस्ताव रखे गए हैं। इन दोनों ही अधिकारों का पालन किया जा रहा है और इन दोनों ही अधिकारों के बीच बहुत महीन फासला है। ऐसा कहना कि इससे निजी जीवन में क्षति हो सकती है ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी देखेंगे कि परामर्श बातचीत के दौरान क्या कहा जाता है।
1: देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलमुसर जिले के प्लेंडेपापाय में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मॉरिशस वासियों ने भाग लिया। वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जीतन ने इस राष्ट्रीय कार्रवाई के दौरान नागरिकों की प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। एकत्रित किए गए इन सुझावों का उपयोग अब एक कार्य योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा जो अगले 25 वर्षों में मॉरिशस के विकास को दिशा देने का काम करेगा। मंत्री ज्योति जीतन को सुनते हैं जिनसे बात की अंजलि सिरतन फुलचंद ने।
2: Nous finons dans les 12 municipalités et district council que nous finons à la rencontre de ban villageois ban citoyens.
0: मंत्री ज्योति जीतन ने कहा, 12 नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में गए, गांव वालों और शहर के निवासियों से मुलाकात हुई, साथ में आर्थिक ऑपरेटरों से भी, छोटे मध्यम और बड़े ऑपरेटर भी रहे, कॉलेजों के छात्रों से भी मुलाकात हुई, साथ ही बुजुर्ग लोगों से भी भेंट हुई, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी रहे। अभी तक 1200 से 1500 लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। उनसे यही जानना चाह रहे थे कि वे किस तरह भावी मॉरिशस को देख रहे हैं, इस विजन को साकार करने के लिए वे किस तरह की उम्मीद रखे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के साथ भी परामर्श बातचीत चली, 21 थेमेटिक कंसल्टेशंस किए गए। शुक्रवार को ये सब पूरा हुआ। अब विजन 2050 की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आशा है कि 2026 के जुलाई महीने में एक पहला मसौदा प्रकाशित कर पाए।
1: इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रहे थे। ये मामला फरवरी 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कई मिलियन रुपये और विदेशी मुद्रा से संबंधित था। बचाव पक्ष ने इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया था, साथ ही जांच में हस्तक्षेप और मामले में अत्यधिक देरी के आरोप भी लगाए थे। यासिंदीन महमूद, करुणा लालू।
3: मजिस्ट्रेट राजिया जानू जोनबुकस और अब्दुल रहीम तजुद्दीन की कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला पड़ने के बाद डॉक्टर नवीन राम गुलाम के वकील गोबिंद गंबर ने कहा कि एक विंच हंट यानी कि राजनीतिक प्रताड़ना खत्म हुई है।
4: L'injustice qu'ils commettent vis-à-vis le Premier ministre et ils trouvaient un manquement grave qui finit dans l'enquête policière. Comme a dit, c'était une chasse aux sorcières, comment pour mettre-li dans prison et finir politiquement. Mais on connaît seulement plus là où qui tout le monde est un bon Dieu.
3: Mais Dr. Navin Ram Gulam a dit qu'il a eu ce choix.
5: Moi, c'est moi qui vous dis d'abord que je suis bien content que la justice est imprimée. Comment mettre Ramban Fekdia, un calvaire qui a commencé depuis 2014, au fait. Une vidéo 2015-2016, et je vous dis,

0: sur ça là, même mon premier ministre pour le respecter là. Vous trouvez mon bien, vous pouvez assiser dans la boxe. Et je vous dis ça, Calvaire, là, j'espère qu'il est terminé.
1: मजिस्ट्रेटों का निर्णय मुख्य रूप से पुलिस जांच में पाई गई गंभीर खामियों पर आधारित है। अदालत के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई गिरफ्तारियां स्थायी आरोप पर जांच से ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। अदालत के तर्क में एक महत्वपूर्ण तत्व जुफ्राई के दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर शपथ पत्र था। इस शपथ पत्र में तत्कालीन सरकार के कुछ सदस्यों तथा राकेश गुलजोरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। फैसले के अनुसार ये आरोप फरवरी 2015 में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के घर तलाशी के दौरान बरामद लगभग 200 मिलियन रुपए से कथित आपराधिक गतिविधि जोड़ने के प्रयासों से सीधे रूप से जुड़े थे। अदालत ने विशेष रूप से पुलिस की आलोचना की कि उसने इन आरोपों की जांच नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के उस दावे की भी जांच नहीं की जिसमें उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का एक सदस्य पुलिस जांच का मार्गदर्शन और सलाह दे रहा था। अदालत द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा ये था कि जाँच अधिकारियों में से एक ने स्वीकार किया कि उस समय के अटोर्नी जनरल बरामद धनराशि की गिनती के दौरान उपस्थित रहना चाहते थे। हालांकि नवीन राम गुलाम के वकीलों की आपत्ति के बाद उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। मजिस्ट्रेटों के अनुसार इन सभी तथ्यों की गहन जांच होनी चाहिए थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये मामला स्पष्ट रूप से राजनीतिक महत्व रखता था। आरोप की प्रकृति पर अदालत ने कहा कि डॉक्टर नवीन राम गुलाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था बल्कि उन पर नकद भुगतान की सीमा से संबंधित एक अपराध का आरोप था। न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि इस मुकदमे में शामिल धनराशि को किसी आपराधिक गतिविधि से नहीं जोड़ा गया था। अंततः अदालत ने माना कि इन परिस्थितियों में मुकदमे को जारी रखना ये संदेश देगा कि उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है। मजिस्ट्रेटों ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाही जारी रखना न्याय और निष्पक्षता की भावना के विरुद्ध होगा। दूसरी ओर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीपीपी दफ्तर ने पुष्टि की कि वो इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगा।
2: और दूसरी ओर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस का कार्यालय इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा। डीपीपी सीनियर काउंसिल वकील राशिद अमीन ने इस अदालती फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। राशिद अमीन ने ORM1 से बात करते हुए कहा, हमारा मानना है कि अदालत का ये फैसला कानूनी रूप से गलत है और इसलिए हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ तुरंत अपील में इस फैसले को चुनौती देंगे। एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के अलावा कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में कल सोमवार को इस स्थल का एक दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अनाबेल वुल्बेया, आस्था गुबिन।
3: हर दिन गंगा तालाब हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉरिशस के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस आध्यात्मिक तीर्थ स्थल की दिव्यता और धार्मिक महत्व को अनुभव करने यहाँ पर आते हैं। लगभग 300 मंदिरों और करीब 50 धार्मिक संगठनों से जुड़ा ये स्थल देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, लेकिन हाल में यहाँ हुई कुछ घटनाओं ने इस पावन स्थल की मर्यादा, पर्यटकों के आचरण और धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान को लेकर चिंताओं को फिर से जन्म दिया है।
4: Maurice n'est un pays multiculturel, nous n'avons beaucoup lieu de culte comme ça, on dit pas c'est ça grand bassin mais il partout dans le pays, côté nous pouvons un minimum de respect. Et aussi dit pas ce respect touriste bien respecté, c'est pas les mauriciens eux-mêmes qui bien respecté que ce soit vestimentaire, tu dis pas vraiment une veg ici.
3: स्थिति को देखते हुए नेशनल हेरिटेज फंड ने आगंतुकों के लिए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की है जिसका उद्देश्य दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना और गंगा तालाब की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना है। इन प्रस्तावों को हाल ही में संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इनके जल्द लागू होने की संभावना है।
5: sa place là, parmi d'autres bandes de représentation, c'est qu'il y a un trust.

0: Et nous avons envie de faire un trust qui est sérieux. Nous pouvons ensemble nous donner un coup de main, mais un trust là pour gérer par PMO.
1: ये प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा ताकि ये पवित्र तीर्थ स्थल आगे भी अपनी परंपराओं मूल्यों और श्रद्धा के वातावरण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता रहे।
2: अब मॉरिशस में किशोरावस्था में होने वाले गर्भधारण के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए संबंधित किशोरियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो मनोसामाजिक निगरानी यानी साइकोसोशल फॉलोअप सुनिश्चित की जाती है, जिसके तहत परामर्श, होम विजिट और एक सुरक्षित माहौल तैयार करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि युवा माँ और उसके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पोर्टलुई में मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित एक आश्रय केंद्र भी मनोवैज्ञानिक सहायता, ग्रुप थेरापी और साथ ही पढ़ाई को फिर से शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है। साल 2025 से यौन शिक्षा को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कम उम्र में गर्भधारण की रोकथाम को मजबूत किया जा सके। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की निदेशिका विद्या चरण को सुनते हैं, जिनसे बात की रजनी भी करने।
3: हमने के जन सेंटर है, जन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री और जेंडर पॉलिटी के जेंडर से सहयोग से चले रहा और वहाँ पे जितना लोग भी आवेला यानी के जो लड़की लोग बा गर्भावस्था के अवस्था में बा या जो के अब्यूज होल बा तो वहाँ पर आवेदन था और यहाँ हमने के जो ये साइकोलॉजिस्ट बा जो प्रोग्राम ऑफिसर है या जो मेडिकल ऑफिसर है उन लोग के सहायता देवलन जा। हर साल में लगभग 700 से ज्यादा लोग आवेलन जा तो उन लोग में अब्यूज हो लोग जा और जब मैं प्रेगनेंसी भी हो लो जा तो वो लोग भी आवेदन जा। इसके आधारण पे हमने जो सहयोग दे लगा उन लोग के मेडिकल, साइकोलॉजिकल या जन भी सहयोग हमने के हमने के संस्था के ओर से जन भी दे लगा तो वो लोग उन लोग के दे लगा।
2: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत व्हाइट हाउस ने शगल्स द्वीप समूह के संबंध में कई विकल्पों पर विचार किया है, जिसमें इस द्वीप समूह को सीधे खरीदने की संभावना भी शामिल है। इस कदम का उद्देश्य मॉरिशस को द्वीपों की संप्रभुता हस्तांतरित करने की यूके की योजना को दरकिनार करना है और साथ ही जेगो गार्सिया के रणनीतिक सैन्य अड्डे पर अमरीकी नियंत्रण को बनाए रखना सुनिश्चित करना है। इन जानकारियों के अनुसार चीन और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वाशिंगटन सबसे पहले हिंद महासागर में इस प्रमुख सैन्य ठिकाने को सुरक्षित करना चाहता है, जिसका उपयोग लंबी दूरी के सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है। इसे सीधे खरीदने का विचार अमरीकी उपस्थिति को उन रणनीतिक स्थानों पर बनाए रखने की एक व्यापक इच्छा का हिस्सा है जिन्हें उसकी सुरक्षा और परिचालन क्षमताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन जानकारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मॉरिशस के अटोर्नी जनरल के कार्यालय ने संकेत दिया है कि सरकार ने द टेलीग्राफ के लेख का संज्ञान लिया है, लेकिन जेगो गार्सिया या शगल्स द्वीप समूह पर किसी अलग समझौते को लेकर अमरीकी प्रशासन के साथ न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क हुआ है। कार्यालय ने अंत में ये भी दोहराया कि मॉरिशस का रुख अपरिवर्तित है, शगल्स द्वीप समूह पर संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक ऐसी जलवायु घटना जिसने विशेषज्ञों की चिंता पहले ही बढ़ा दी है, एल नीनो जो प्रशांत महासागर को पार करने से पहले पेरू के क्षेत्र से उत्पन्न होता है, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया को अधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियों के साथ प्रभावित करने लगा है। लेकिन जल भूविज्ञान सलाहकार प्रेम सैडल के अनुसार इसके प्रभाव सितंबर या अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँच सकते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आगामी तूफानी मौसम को भी प्रभावित कर सकती है। अंजलि
4: एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक मौसम संबंधी घटना है। ये हर 2 से 7 वर्षों में मध्य और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर के पानी के सामान्य से अधिक गर्म होने पर होती है, जो पूरी दुनिया के मौसम, बारिश और तापमान को बुरी तरह प्रभावित करती है। ये पेरू के पास उत्पन्न होता है और धीरे धीरे प्रशांत महासागर से होते हुए विकसित होता है।

0: कई अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल केंद्रों के अनुसार, जिनमें विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन भी शामिल हैं, प्रशांत में सतह पर तापमान कई महीनों से तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस साल से एलनीनो के फिर से प्रकट होने की भी भारी संभावना बढ़ रही है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान के कंसल्टेंट प्रेम सादल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इनके पहले प्रभाव महसूस होने लगे हैं। उन्होंने कहा,
1: एलनीनो से लॉन्ग फॉर्म

0: करते हुए पूरे जलवायु को ही बदल देता है। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित कर रहा है सूखा पड़ रहा है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मॉरिशस में और हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में सितंबर या अक्टूबर महीने में इनके असर दिखने लग सकते हैं। धीरे धीरे ये हिंद महासागर पर से गुजरेगा। हो सकता है कि ये हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से को प्रभावित करे, अतः मस्कारेंस के टापुओं को सितंबर या अक्टूबर महीने में। सितंबर का महीना मॉरिशस में सूखा ही होता है, अक्टूबर मॉरिशस का सबसे सूखा महीना है। अब हो सकता है कि ये सूखा नवंबर और दिसंबर महीने में भी जारी रहे। प्रेम साडल के अनुसार चाहे मॉरिशस में इनके परिणामों की सही गंभीरता को अभी मापा नहीं जा सकता है, फिर भी आने वाले महीनों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है।
1: विदेश में ईरान और इसराइल का कहना है कि उन्होंने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। अप्रैल के संघर्ष विराम के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि उनका देश इस समय गोलीबारी रोक रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उधर फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के कारण सोमवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो गई, जब दक्षिणी फिलीपींस के एक प्रांत में मुख्य रूप से भूकंप के कारण हुए भूस्खलन की वजह से कम से कम 17 लोगों की जान चली गई। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन दूर होता जा रहा है। पूर्व से पाए जा रहे बादल कभी कभार स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि सुबह के वक्त ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी, अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान कभी कभी बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और आज शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम के हाल के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:53 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। क्लेफो नंबर 3 वाकुआ में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा लक्ष्मणन, जो मैन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 उनके घर क्लेफो नंबर 3 वाकुआ से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30। बेनिकाली नंबर 2 ग्लेन पार्क वाकुआ में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा बाय भाऊ, पैदाइशी नाम लक्ष्मो और जो मानती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थिक कल सुबह 9:30 उनके अर्थिक कल सुबह 9:30 उनके घर बेनिकाली नंबर 2 ग्लेन पार्क वाकुआ से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30। इंग्लैंड में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया, जो रोई नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले टैगोर रोड फोंजुसाक रहते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 उनकी पत्नी श्रीमती सबिता रुचाया के घर इंग्लैंड से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो।

0: 12 balls to 1. Marc-Étienne Lagrément-Saint-Pierre, 68 saal ke, 68 years old ke Shri Bhim Shrimantu, जो जीवन नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है, उनके अर्थी कल दिन की उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर मकैटलेन लागरेमेंट सेंट पियर से उठाकर से कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM. रुद बासें में तेरेजा लेन काट्रोबोन में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश बदाई जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है, उनके अर्थी आज सुबह 10:30 PM उनके घर रुत बासें में तेरेजा लेन काट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10:30 PM. महेश्वर नगरी रोड नवीन मिल त्रियोली में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री जनेश सिंह मुसारी जो अश्विन नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनके अर्थी आज दिन के 2 PM उनके घर महेश्वर नगरी रोड नवीन मिल त्रियोली से उठाकर टेमिनस त्रियोली की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. नंबर 113 एवेन्यू पालमिये विल में बुबासें में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की कुमारी विद्वंती पुनीत जो बैरी नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, उनके अर्थी आज दिन के 2 PM उनकी बहन लेका पुनीत सिवंथाना के घर नंबर 113 एवेन्यू पालमिये विल में बुबासें से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. Avenue Manguier Isidore Rose में 70 साल की 70 years old की श्रीमती बारूनी सिपुल पैदाइशी नाम फकीर और जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के 2 PM उनकी बेटी प्रिया स्वांबर के घर एवेन्यू मांगे इसिडोर रोज से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. रामास्वामी लेन लालमाटी में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री नरसिंह दास रामास्वामी जो राम नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनकी अर्थी आज दोपहर 3 PM उनकी पत्नी श्रीमती चित्रानी रामास्वामी के घर रामास्वामी लेन लालमाटी से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. नंबर 36 अबातो रोड खुशबुआ में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री खेमराज चरितर जो जानो नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 36 अबातो रोड खुशबुआ से उठाकर सिपाही भोले की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है.
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits, music only.
2: Feels a Musti.

0: हमारे भी नैन मिले थे और आप थी कौन अरुणा. वेल थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग आपको एंड विशिंग मामा रंभा पिताजी सूर्यदेव गुड हेल्थ एंड आप उनसे बहुत प्यार करते हैं. बस ऐसे ही प्यार निभाते चलिएगा एंड थोड़ी देर में साथ बजाएंगे एंड वेट करें कि कब दीदी आएंगी और आपका साथ देंगे इन मॉर्निंग बीट.
1: जब से मिला है तेरा इशारा
0: मिल गया. 7 बज चुके.

0: Morning beat.
1: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
3: सर्विस करें, एक मिनट हो चुका है. विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग.

0: RM2, Radio Musty in the mix.
1: सुबह के 7:05 हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, मेरी तरह की ओर से मॉर्निंग बीट में आपका स्वागत है।

0: चौहान, दैट वाज चिकरी चिकरी और यहाँ पर चिल्लाती हुई आपकी दोस्त वेदिता।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: झूठी इतनी भी नहीं चिल्लाती। चलो सुबह के 7:14 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू मॉर्निंग बीट। मैं हूँ वेदिता और उम्मीद है कि आपकी सुबह एक फ्रेश स्माइल के साथ शुरू हुई होगी। अगर अभी भी नींद आंखों में इधर उधर झोल रही है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे ज़बरदस्त म्यूजिक, कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब जिससे आपकी आंखों से नींद छुरन उरन छू हो जाएगी।

0: उरन छू कहते हैं ना, उरन छू हो जाएगी। चलो अभी क्या है ना कि आप लोग अगर ऑफिस पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं या स्कूल जाने के लिए बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, जिम में कुछ लोग वर्कआउट्स कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गर्मा गर्म चाय के साथ बैठ कर हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी ऑफिस पर जाने के लिए घर से निकलते होंगे या निकल गए होंगे। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग बीट। बताइएगा जरूर कहाँ तक पहुँचे और मूड कैसा है आज।
1: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: वेल आपके लेजी लेजी लम्हों को क्रेजी बनाने के लिए कुछ फन ऐड करने के लिए हम आ जाते हैं हर मॉर्निंग आपका साथ देने के लिए मॉर्निंग बीट
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: जी हाँ, ट्यूसडे 9th of June, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आपका सुबह के 7:26. मैं हूँ वेदिता, साथ दे रही हूँ आपके मॉर्निंग बीच में ऑन रेडियो मस्ती। चलिए मस्ती तो यहाँ पर हम करते ही हैं, साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आप अगर ऑफिस में ऑलरेडी पहुँच गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि करना क्या है, तो अपने टू डू लिस्ट में जो सबसे पहला काम है, जो इम्पोर्टेंट है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी वैसे भी जल्दी अगर ऑफिस पहुँच जाते हैं कुछ लोग, तो सोचते ही रहते हैं कि भाई हमें करना है, क्या करना है, करना क्या है, बस आपको हमारे साथ रहना है। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप लोग सुबह काम पर जाने से, जिन रास्तों से निकल कर गए हैं काम पर, हो सकता है कभी कभी वहाँ पे कुछ परेशानियां होती हैं, हो सकता है कई रोड पे गड्ढे होते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कोई यू टर्न हो जाता है, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपस में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने तो झेल लिया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए अगर आप काम थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, तो प्लीज लेट अस नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द रोड ऑन 549 and 1294। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारी बर्थडे ऑफ द डे की ओर। अगर आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, सरप्राइज करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी देयर नेम एंड फोन नंबर ऑन 549 and 1294। लूलू हाइपरमार्केट की तरफ से सरप्राइज करने के लिए हम रेडी हैं।
2: वेलकम वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: Radio Musty.
1: Hits music only.
3: Feels a musty.

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: मॉर्निंग बीट
2: चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: and 50 with coconut and honey.
1: You're from the radio, right? I just heard you.
0: मैं सबके साथ प्रैंक करने oh my god मैं सबके साथ प्रैंक करने की कोशिश करती हूँ वो सब मुझसे ही प्रैंक कर लेते हैं कोई बात नहीं गुड मॉर्निंग राजा इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड यू नो

0: रेडियो मस्ती।
1: ओहो, जितने लोगों को फोन करो सब कहते भी हम रेडियो ही सुन रहे थे। बनकर अपनी बकवास बनकर है। अभी देखो कैंपेन
2: रेडियो सुन रही थी तो मैंने आपका आवाज सुनी।
1: ओह, और मैंने इसीलिए कुछ शोर वोर कुछ नहीं मचाया, मैंने बोला कि चलो मैं चुपचाप कॉल करती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि जैसे मैं बात करना शुरू करती हूँ सुन लेते हैं सभी। मैंने कहा सीधे सीधे फोन करती हूँ, आपने तो गड़बड़ कर दी। ये पैनकेक मेरे मुंह तक आते आते अब मेरे मुंह से पैनकेक छिल लिया आपने, हैं ऐसे पैनकेक छिल लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको सरप्राइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए यहाँ पर हमारे लिए हमारी तरफ से एक वाउचर है आपके लिए, यानी कि लोरू हाइपर मार्केट की तरफ से यू हैव अ वाउचर विच यू हैव टू कम टू MBC कलेक्ट करना है आज नहीं तो कल अपने ID कार्ड के साथ। सो इफ यू आर फ्री टुडे प्लीज डू कम टू MBC बिटवीन 9:30 to 3 PM एंड अपने ID कार्ड के साथ अपना वाउचर ले सकते हैं। लोलो हाइपर मार्केट एवरी डे वो किसी ना किसी को सरप्राइज करते हैं टू मेक द डे ब्यूटिफुल, एंड स्पेशली जब उनका बर्थडे है तो क्यों नहीं। सो हैप्पी बर्थडे टू यू राजा।
2: थैंक यू।
1: वैसे राजा आप रहते कहाँ हो?
2: बुनाकई।
1: ओके जी। सो अपनी मम्मी का नाम क्या है?
2: सरस्वती
1: आंटी प्रणाम एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। बहुत बहुत प्यार आपको एंड हैप्पी बर्थडे। बाय
2: बाय।
3: RM2 Radio Musti.
4: Hit music only.
5: Radio Musti feels a musti.

0: एंड यस यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे स्पोर्ट्स की ओर.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
3: Allez!
4: Coach, trop beaucoup pression.
3: Pression, c'est quand tu fight ou dans l'équipe qualifiée. Des man mané, c'est menu, ça là.
5: The pressure can

0: wait. Watch all 104 games live on SuperSport, FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DStv English Plus add-on with Canal Plus. Until the 21st of June, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions, valid in Mauritius, VAT included. More info on Canal Plus stores and till shops and canalplus.com.
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
4: Sports news, latest updates.
1: Sports news.
2: Radio Musti in the mix.
5: ये साइये आपका इंतजार है. चलिए जी, हमारे स्पोर्ट्स गुरु आ गए हैं स्टूडियो में, मिलते हैं उनसे, जानते हैं लेटेस्ट खबरें क्या चल रहा है. अरविंद, गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. लेडी क्लब एम के लिए दूसरी जीत. लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में कल हमारी लड़कियों ने जिबूती को हराया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुई. फर्स्ट लेग में 2-1 की जीत, रिटर्न लेग में 1-0 की जीत. अगले राउंड में लेडी क्लबेम का सामना गाना से होगा. डोडो गर्ल्स को बधाई. हमारे लड़के क्लब एम अभी इटली में हैं. सिसिलिया की नेशनल टीम को 2-1 से हराकर सिकेलिया कप जीत पाए. वर्ल्ड योगासन कंपटीशन में मॉरिशस से स्वरित जुआन ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया. स्वरित जुआन MGSS नुवेल फ्रांस का स्टूडेंट है. स्वरित को हार्दिक बधाई. वर्ल्ड कप से पहले अपने आखिरी फ्रेंडली टेस्ट मैच में फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हराया. इसमें बायर्न म्यूनिक के स्ट्राइकर माइकल ओलिजे का हैट्रिक रहा. फ्रांस के मैनेजर जिजे देशांस का आखिरी होम मैच रहा. वर्ल्ड कप के बाद वो फ्रांस का मैनेजर नहीं रहेगा. वर्ल्ड कप में फ्रांस का पहला मैच 16 जून को है सेनेगल के खिलाफ. नेदरलैंड्स की भी जीत हुई 2-1 से उज्बेकिस्तान के खिलाफ. कोडी गाकपो का डबल, दोनों गोल पेनाल्टी पर. आज इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, इसी समय पेरू का मुकाबला स्पेन से हो रहा है. स्पेन अभी 2-0 से आगे है. कोंगो वर्सेस चिली. फुटबॉल रिपब्लिक ऑफ रशिया, त्रिनिदाद और हंगेरी का मुकाबला कजाकिस्तान से है. ये कुछ फ्रेंडली मैच है जो आज खेले जाएंगे. सोमालिया का रेफरी ओमा आतान, जो 2025 का कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल मैंस रेफरी ऑफ द ईयर रहा, वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट नहीं कर पाएगा. उसे US वीजा नहीं दिया गया क्योंकि सोमालिया ट्रैवल बैन लिस्ट में है. डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमालिया को ब्लैक लिस्ट में रखा है. फीफा भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस में वो हस्तक्षेप नहीं करता. आर्सेनल का डिफेंडर जोरियन टिम्बर इंजुरी के कारण वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएगा. टिम्बर के स्थान पर मैनेजर रोनाल्ड कोएमन ने गियर थुदा को रखा है. आरबी लेप्ज़िग का खिलाड़ी जो सन्डरलैंड पर है, सन्डरलैंड में खेलता है ऑन लोन. ट्रांसफर न्यूज, नॉटिंगहम फॉरेस्ट के इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन को साइन करने के लिए मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी दोनों रेस में हैं. दाम 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा होगा. टोटनहम हॉटस्पर मैनचेस्टर सिटी से सावीनो को साइन करना चाहता है. रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फ्लोरेंटिनो पेरेज क्लब प्रेसिडेंट बना. अब द गैलेक्टिकोस का नया मैनेजर फिर से मैनेजर होगा यूजे मोरिनो. 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट. पेरेज ने कहा, हम चुनाव जीत गए और टीम को यूरोप का चैंपियन बनाएंगे. पेरेज ने कहा, एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी को साइन किया जाएगा. कौन है वो अभी तक कुछ पता नहीं. क्रिकेट, टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन में ही पूरा हो गया. भारतीय टीम के विशाल 564 रनों के जवाब में अफगानिस्तान की टीम फॉलो ऑन पर केवल 112 रन पर ऑल आउट. एक इनिंग्स और 300 रनों की जीत टीम इंडिया के लिए. ये टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की सबसे भारी जीत है. डेब्यूटेंट बॉलर मानव सुतर पहली बार के लिए खेल पाया इंडिया के लिए और पहले इनिंग्स में 6 विकेट ले पाया. दूसरे इनिंग्स में वाशिंगटन सुंदर 4 विकेट ले पाया. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. भूलेगा नहीं, मिलेंगे फिर से 8:30 विद द वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन. टिल देन एंजॉय द म्यूजिक. हैव ए नाइस टाइम. बाय बाय.
5: थैंक यू अरविंद, मिलते हैं शाम को.
7: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो. टाइल्स 30 पर 30, मेगा डील.

0: लगेगा। सीजनल फ्रूट्स, गरम सूप या अच्छी नींद ज़रूरी होता है, इसे अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएगा। और एक बात है, विंटर मॉर्निंग्स में सूरज की जो हल्की धूप मिल जाए ना, तो कुछ मिनट उसे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, मूड भी बेटर होता है और दिन भी ब्राइट लगने लगता है, है ना। कभी कोशिश की है आपने सुबह सुबह उठकर ऐसे धूप सेंकना? आहा, क्या बात है। चलिए इसी के साथ यही कहूँगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। याद रखिए, हर सुबह एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। अब जो कल हो गया तो हो गया ना, शायद जो कल नहीं हुआ, जो आप चाहते थे हो, वो आज हो जाए। तो स्माइल रखिए, पॉजिटिव रहिए और रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहिए। अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं अभी 8 बजे के समाचारों की ओर, और फिर समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है ना, यहीं पे हो रही है आपके अपने रेडियो मस्ती पर।
1: In the mix. Radio.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: थैंक यू सो मच रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहने के लिए. दिस इज मॉर्निंग बीट विदिता के साथ. वैसे दोस्तों ठंड के मौसम में अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें.

0: नमस्ते, आवाज आ भोजपुरी में समाचार सुने जा। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ल मामला के देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के पहचान सत्यापित करे खातिर एगो नवा मेकानिज्म लागू करे परी विचार करता। कयन महीना ले चलल देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल के नागरिक संवाद चरण प्लेंदी पपाय में समाप्त हो गल। 1200 से जस्ती जना देश के भविष्य के लेके अपन विचार और सुझाव साझा करलन। अब इस सुझाव के आधार पर ही आवत 25 बरिस खातिर मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार करल जाए। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रहल कार्यवाही पर रोक लगा देवल गल बाटे। उन पर कानूनी सीमा से जस्ती नकद भुगतान प्राप्त करे से जुड़ल 23 आरोप रहल। बचाव पक्ष मामला के राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जाँच में हस्तक्षेप और जस्ती देरी के आरोप लगैली रहल। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामला में प्रभावित युवती और उनकर परिवार के मनोवैज्ञानिक सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान करल जाला। एकर तहत परामर्श घर पर ही निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करल जाला। पोटली स्थिति गो आश्रय केंद्र मनोवैज्ञानिक सहायता समूह चिकित्सा और पढ़ाई दोबारा शुरू करे या व्यावसायिक प्रशिक्षण खातिर सहयोग देवेला। आर दूसर देश के खबर में ईरान और इसराइल बोलेलन की उलोग हमला के रुकियन सब बकीर उलोग चेतावनी देले बाटे कि यदि युद्ध विराम फेनो से उल्लंघन होल तो जवाबी कार्रवाई होई। तदेश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Morning Beat. James. RM2 Radio Musty in the mix.

0: चलिए भाई, आपकी लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए ये था एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए. गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:07 हो रहे हैं.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: गुड मॉर्निंग एंड आपका हम फिर से स्वागत करते हैं रेडियो मस्ती पर. आपका मॉर्निंग बीट प्रोग्राम है भाई. हम यहाँ पर आते हैं आपके मॉर्निंग को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए. बस इतनी कोशिश रहती है कि सुबह सुबह पे जब आप रेडियो ऑन करें तो आपके चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर आए. तो चलिए, अभी तो हम आपके लाइफ को स्पाइस अप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मौसम कैसा है ये भी तो जान लेते हैं. तो मिलते हैं विधिमा से, जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: On est tous winners.
4: दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन दूर होता जा रहा है. कभी कभार पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी. अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे. दिन के दौरान धूप खिली रहेगी. अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस. रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कभी कभार वर्षा होगी. न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:40 पर और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
5: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. La gamme de Red Bull de 250 ml à 64,95 roupies et toute la gamme de barres de chocolat Cadbury de 150 grammes à 105,95 roupies. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
6: On est tous Winners!
1: Morning Beat!
7: Oh God! One more remix!
1: A good beat for your morning show!
2: RM2, Radio Musti, in the mix!
1: RM2,
2: Radio Musti!
8: Un kilomètre à pied, on s'amuse, et 10 kilomètres à pied, on s'amuse en forêt.
9: Eh oui, en ce moment, ton Cheeky Family t'emmène en forêt à l'Ebony Forest de Chamarelle. Découvre en pleine nature les plus beaux panoramas, un musée d'histoire naturelle ainsi qu'une visite guidée de 30 minutes. Alors, en avant, marche!
8: 2 kilomètres à pied, on s'amuse.
10: Communiqué depuis ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, ministère pour un fonds public qui est

0: avant de défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, अगर रास्ता जो है उसमें कंकड़ हो तो अच्छे जूतों के साथ रास्ता पार किया जा सकता है, लेकिन एक भी कंकड़ आपके जूते के अंदर होना तो कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब बहुत ही आसान है, ज़िंदगी में बाहर की मुश्किलें उतनी तकलीफ देती नहीं जितनी अंदर की परेशानियाँ। बाहर के

0: चैलेंजेस को हम हिम्मत मेहनत और तैयारी से पार कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी गुस्सा जलन या डर हो तो छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है इसलिए आज सिर्फ अपने रास्ते को नहीं बल्कि अपने दिल और सोच को भी साफ रखिए क्योंकि जब अंदर सुकून होता है तो बाहर के कंकड़ भी छोटे लगने लगते हैं अपने जूतों से पहले अपनी सोच को कंफर्टेबल बनाइए सफर खुद ब खुद आसान हो जाएगा और कुछ लोगों की इतनी आदत होती है इतने मासूम होते हैं कि दूसरों के राह से भी कंकड़ निकालने के लिए वो निकल जाते हैं भले उनके पैरों में कितनी चोट क्यों न लगे सबसे पहले अपने जूतों के अंदर से कंकड़ निकालो फिर बाहर जाकर दूसरों की मदद करो इससे आपका भी दर्द कम होगा और उनके जीवन में भी दर्द कम होगा
1: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse, il un nouveau départ, un nouveau l'énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: Radio Musty in the mix.
3: Radio Musty feels a musty
2: in the mix.

0: अजी रास्ता तो रोक ही लेंगे अगर स्पीड लिमिट ज्यादा हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगर आप इस वक्त स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं और ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं तो एक छोटी सी याद दिलाती हूँ बात कि रोड पर जल्दी पहुँचने से ज्यादा जरूरी है कि आप सेफली पहुँचे। इसलिए बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड मी सम इन्फो कंसर्निंग द रोड, कहाँ तक पहुँचे, अगर ट्रैफिक में फंसे हैं। वैसे ट्रैफिक अपडेट्स के साथ हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे जरूर, फिलहाल अभी के लिए गीतों के साथ आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो स्ट्रेस मत लीजिए, टेक इट इजी, डीप ब्रीथ लीजिए, अपना फेवरेट गाना एंजॉय कीजिए और याद रखिए कि ये ट्रैफिक टेम्पररी है लेकिन आपका जो मूड है पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला है। तो अगर मॉर्निंग में मूड खराब हो गया तो आपको पता ही क्या होगा, इसलिए मूड को ठीक रखो, हमारे साथ गाने सुनते चलो और कुछ भी अगर आप नोटिस करते हैं रोड पर जो आप चाहते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक पहुँचा दें हम, तो 549 and 1294 योर मोस्ट वेलकम।
1: Morning beat.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: इंतजार नहीं किया तो कर लीजिए वर्ल्ड कप की ओर चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं अरविंद
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर मंजिल एकदम सामने है आज 9 जून परसों 11 जून फुटबॉल का सबसे महान टूर्नामेंट शुरू होगी मेक्सिको कनाडा और यूएसए तैयार हैं जो गुजोता होता तो वर्ल्ड कप में खेलता फीफा के लेटर्स दैट यूनाइट पहल पर जो गुजोता की पत्नी रूथ कार्डोज़ो ने एंडी रॉबर्टसन को एक इमोशनल लेटर भेजा जोगो जोता और रॉबर्टसन हमेशा कहते रहे कि वर्ल्ड कप में खेलना उनका सपना है जब स्कॉटलैंड क्वालिफाई हुआ तब उसने जोता को याद किया था एंडी रॉबर्टसन के साथ जोता भी वर्ल्ड कप में है ऐसा उसकी पत्नी ने कहा थैंक यू फॉर टेकिंग जोगो जोता विद यू 6 वर्ल्ड कप में खेलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं लुका मोड्रिच मैनुएल न्यूयर और यूटो नागातामो इनके लिए फिफ्थ पार्टिसिपेशन नेदरलैंड्स के डिफेंडर जूलियन टिम्बर के लिए हार्ट ब्रेक इंजुरी के कारण उसे स्क्वाड छोड़ना पड़ रहा है और सोमाली का रेफरी ओमा आर्टन भी नहीं जा पाएगा उसे वीजा नहीं दिया गया मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसे एंट्री नहीं मिली क्योंकि सोमालिया यूएस के ट्रैवल बैन लिस्ट में है बैड लक इस रेफरी के लिए और वैसे वर्ल्ड कप में जाने के लिए वीजा को लेकर काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत फैंस वहां नहीं जा पा रहे हैं लेकिन आप जाएंगे जरूर क्योंकि एमबीसी के साथ आप लोग मैच देखेंगे और एमबीसी रेडियो के साथ ऑल न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज आपको देते रहेंगे वर्ल्ड कप स्पेशल में सो गेट रेडी वर्ल्ड कप नॉकिंग एट द डोर और दो दिन एंड विल बी इन मेक्सिको टेक केयर बाय बाय
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews, and latest updates

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: एंड यस दोस्तों, चलिए इसी के साथ अब समय हो गया है। आप तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है जिनका नाम है सोनम कपूर। जी हाँ, सोनम कपूर ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ फैशन सेंस से भी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, उनका जो फैशन स्टाइल है सबको पसंद आता है और उनकी पहली फिल्म उतनी चली नहीं थी, लॉन्च तो कर दिया उसको, लेकिन हाँ बाद में उन्होंने दिखाया कि भाई हम किसी से कम नहीं है, वैसे भी हम अनिल कपूर की बेटी है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने कई सारे ऐसे मेमोरेबल फिल्में दी हैं हमें जिसे आज भी हम देखना पसंद करते हैं, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी एक्टिंग पर भी बहुत काम किया है जिसके चलते आज वो सबसे यानी सक्सेसफुल जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की उनकी लिस्ट में इनका नाम आता है। तो जितने भी उनके फैंस हैं उनको कहेंगे इंजॉय करें हमारा अगला गाना, और ये है उन्हीं की मूवी से खूबसूरत, याद है ना आपको।
1: RM2 Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti. Feels a Musti.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: चीज बड़ी
4: वो नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली। वो बेवफा छलावट की।

वेल गाइस, अभी तो हमने पार्टी कर ली। चलो, एक और हीरोइन है, उनका भी आज बर्थडे है, उनको भी हैप्पी बर्थडे विश कर ही देते हैं। और वो खास एक्ट्रेस है अमीषा पटेल, कहूँ ना प्यार है। जी हाँ, प्यार

हो गया उनको और बॉलीवुड में छा गई और इनसे भी सबको प्यार हो गया। तो बस इतना कहना है कि उन्होंने थोड़े समय के लिए ही बॉलीवुड ज्वाइन किया और बहुत इन डिमांड थी ये हीरोइन। ऋतिक रोशन के साथ इन्होंने काम किया, पहली मूवी कहो ना प्यार है इतना बड़ा सक्सेस हुआ, सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब फिर सक्सेस आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर पता नहीं वो कैसे कहाँ गलत फिल्में चूज़ करती रही और बाद में

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: मैं निकला गड्डी लेके और गड्डी लेके आ गया बिल्कुल स्टूडियो के अंदर. गुड मॉर्निंग विकास.
3: गुड मॉर्निंग.
2: हाउ यू डूइंग?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम तो बहुत ही कमाल का, जहाँ पर जो कड़क धूप है उसको सेकने का मजा ही कुछ और है.
2: हाँ,
3: ऐसे मौसम है ना,
2: सर्दी के मौसम में मजा आता है, गर्मी के मौसम में मजा नहीं आता.
3: हाँ, ये तो सच बात है. और काम पर आकर यू नो म्यूजिक होता है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता ही है. अच्छा, मैं देख रहा हूँ तुम हील्स काफी लंबी पहन कर आई हो.
2: हाँ, वो
3: इंस्पायर होगी गाने से.
2: गाने से इंस्पायर हो गए. वेलकम टू द जंगल. लेकिन जंगल में हील्स पहन के कौन जाता है?
3: इसे उतार दो और अब डांस करने का टाइम आ गया. ऊंचा लंबा कद, सोनी भी तो हद.
2: ऑलराइट गाइस, इसके बारे में और ज्यादा टिप्स विकास के साथ उनके शो में मिलेगा. मेरे जाने का टाइम हो गया. चलिए जी, अब हम कल मिलेंगे आपसे मॉर्निंग 7 बजे आप ही अपने मॉर्निंग बीट में. दिस इज वेदिता सिंह, बाय बाय टू यू. चलो तो कल मिलने का वादा करके जा रहे हैं. जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एंड लाइक वी सेड, वेलकम टू द जंगल. अभी ये फिल्म आने वाली है और इस फिल्म की पूरी तैयारी हो रही है. कितने सारे एक्टर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, परेश रावल, नाना पाटेकर. बाप रे, मेरी सांस फूल गई. मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ. बाय बाय, टेक केयर.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Good morning, time check. It's 9 a.m. थोड़ी देर में सुन पाएंगे हम संक्षिप्त समाचार, साथ जुड़े रहिए।

0: समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने

0: पर विचार कर रही है। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलमुस जिले के प्लेंदेपापाए में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मॉरिशसवासियों ने भाग लिया। वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने इस राष्ट्रीय कार्रवाई के दौरान नागरिकों की प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। एकत्रित किए गए इन सुझावों का उपयोग अब एक कार्य योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा जो अगले 25 वर्षों में मॉरिशस के विकास को दिशा देने का काम करेगा। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटीमोनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रहे थे। ये मामला फरवरी 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कई मिलियन रुपये और विदेशी मुद्रा से संबंधित था। बचाव पक्ष ने इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। और विदेश में रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के अभियान ने मॉस्को की आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया है और रूस की तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के हमलों से पहले से ही पैदा हुए ईंधन संकट को और गंभीर बना दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 9 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग. 9:08 और 9 तारीख. क्या कमाल का कोइंसिडेंस है ना. चलिए सही, आपका स्वागत है. और मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर आपको साथ मिल जाए और लगता है कि ऐसे ही कंपनी चलती चली जाएगी 24/7, तो वो है RM2. हेलो, गुड मॉर्निंग. जहाँ आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर हिली हुई है बहुत सारे लोगों की. आजकल खाने पीने की बात करें या फिर मौसम के चेंज की बात करें तो थोड़ा आवाज़ में चेंज आ ही रहा है. कुछ सिलसिला यहाँ पर भी ऐसा ही. नितूषा से मिला अभी, वो भी गला बांध के ही बस थोड़ी सी बात करी और वहीं पर भेज दिया. यहाँ पर हमारी पूरी टीम बस लगी हुई है आपको ले जाने के लिए इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं द म्यूजिक वर्ल्ड. हेलो, वेलकम. चलिए, ट्यूसडे का दिन और हम तो चाहते हैं कि आप जहाँ गानों को एंजॉय करें वहीं पर एंजॉय करें, साथ में चाहे हाउस होल्ड या फिर डेकोरेशन टिप्स हो या फिर कुछ रेसिपी की बात करें या फिर बी टाउन की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अपने पास. मैं हूँ विकास और इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का भी. स्टे ट्यून्ड 5499-1294 पर.
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: काफी अच्छी तरह अउआ वो तो पहले भी हम सुना, लेकिन अउआ उआ के बाद ये पूछूंगा क्या उआ क्या उआ।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: साहब जो नहीं हुआ वो हो सकता है, बस कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो। और शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: आज के दिन आपके जीवन में नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आएगा। सुबह से ही मन खुश रहेगा और अच्छे समाचार आपका उत्साह बढ़ाएंगे। करियर में कोई शानदार मौका मिल सकता है जिससे भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। परिवार का माहौल भी सुकून देगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज मेहनत ज्यादा रहेगी, लेकिन यही मेहनत आने वाले समय में बड़ा फायदा दिला सकती है। बिजनेस करते हैं तो कोई नया आइडिया या प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने का सही समय है। अपनी प्लानिंग और समझदारी अरे साहब लोगों को काफी प्रभावित करेंगे। आर्थिक मामले भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। अतिरिक्त आय या फिर नई कमाई के जो रास्ते हैं खुल सकते हैं। आप खर्चों को लेकर काफी समझदारी दिखाएंगे जिससे बचत भी बढ़ेगी, लेकिन बातचीत में थोड़ी सी सावधानी रखें क्योंकि आपकी छोटी सी कोई बात किसी को गलत लग सकती है।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। ऑफिस या बिजनेस में आपके काम की तारीफ होगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। काम करने की क्षमता तो है ही, बस लगे रहो। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी और घर का माहौल भी खुशनुमा रहने वाला है।
2: लियो सिंह राशि।
0: लियो काम कर दियो, वैसे समय रहते अगर काम हो जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा लगता है। नहीं, हर कदम सोच समझ कर उठाने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। काम को टालने की आदत उसको और मुश्किल में ना लाएं, क्योंकि आज जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं उसको खत्म करने के बाद ही। भाई ये जरूरी है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया है तो उसको पूरा करें, कंप्लीट करें और आगे बढ़ने से बिल्कुल ना डरें।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: आज का दिन थोड़ी से चैलेंजेस लेकर आ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप अपने आप को संभाल लेंगे। नया काम शुरू करने का विचार मन में आएगा, लेकिन अगर मन में कोई भी डाउट है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। परिवार आपकी पहली प्राथमिकता है। घर में कोई शुभ समाचार या नए सदस्य के आने से खुशी मिल सकती है।
2: लिब्रा तुला राशि।
0: सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। आज अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रुका हुआ काम पूरा होने से मन को राहत मिलेगी। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल ये रखना जरूरी है। किसी दूर के रिश्तेदार से मुलाकात या बातचीत दिल को खुशी दे सकती है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज नई शुरुआत आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकती है। कुछ नया करने का जोश बना रहेगा और उसका फायदा भी मिलेगा। नया वाहन या कोई बड़ी खरीदारी होने के योग है। माता जी के साथ धार्मिक यात्रा मन को शांति दे सकती है।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
0: आज सेहत को लेकर जैसे मौसम बदल रहा है ना, थोड़ी सावधानी जरूरी है। काम के साथ आराम और सही खान पान इस पर भी ध्यान दें। मौसम का असर शरीर पर महसूस हो सकता है। नई योजना या प्रोजेक्ट शुरू करने की आपको प्रेरणा मिलेगी।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: दिन की बात करें आज 9 जून की तो दिन जो है मिला जुला है, लेकिन आपकी जो समझदारी है हर मुश्किल आसान कर देगी। वेरी गुड। कोई पुरानी बात सामने आ सकती है जो कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है। परिवार का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। करियर में नई जिम्मेदारी या नौकरी

0: का नया अवसर आपको मिल सकता है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज प्रगति की राह पर आपके कदम और मजबूत होंगे। परिवार या संतान की ओर से कोई खुशखबरी मन को उत्साहित कर सकती है। घर के मामलों को बैठकर सुलझाने से रिश्ते और मजबूत होंगे। विद्यार्थी हैं तो मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज आपके काम को नई दिशा मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी और पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी की ओर से मिला कोई सरप्राइज आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ सकता है। पुरानी सेहत समस्या थोड़ी परेशानी दे सकती है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें। नौकरी में मनपसंद काम मिलने से संतोष और खुशी दोनों महसूस होंगे।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. RM2 Radio Musti. In the mix. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चल बात करें वर्ल्ड कप की और ये हम क्या सभी लोग बात कर रहे हैं और क्या कमाल के मैचेस होने वाले हैं। देखते हैं क्या कमाल इस बारी। हर टीम बहुत ही कमाल की टक्कर।

0: और वहीं पर मां संग्राम ये होगा फुटबॉल ग्राउंड में। लेकिन सभी मैचेस को देखने के लिए आपको डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0। और जानते हैं आपको एक मैसेज आता है जब आप साइन करते हैं और पेमेंट करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज को आपको ओके करना है, अप्रूव करना, उसके बाद ही आपकी पेमेंट जाती है आगे और आपको मिलता है चांस टू वॉच ऑल द मैचेस ऑन एमबीसी प्ले 1.0। तो बस इंतजार मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एमबीसी प्ले 1.0। और उसके बाद जब पेमेंट करेंगे ओके करना जरूरी है, जो आपको नोटिफिकेशन आता है। चलिए उसके बाद लगे रहो और अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। यस इज ऑल हैपनिंग राइट हियर ऑन
1: RM2 Radio Musti. Hot the lights, go black. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti feels a Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: म्यूजिक कितना असर पैदा कर देता है ना, यानी कि लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और वो एनर्जी होती है और वो आत्मविश्वास कि अब सब ठीक होने वाला, वो एनर्जी की बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ लगता है कि अब वो एनर्जी नहीं रही, वो तो उम्र की बात है। लेकिन पीठ दर्द ये काफ़ी समस्या है जो बुजुर्गों में देखने को मिलती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से भाई जो युवा पीढ़ी है वो भी इससे उनकी जीवन शैली बदल गई है, इसलिए प्रॉब्ली काफ़ी देर बैठे रहना और फिर पीठ दर्द की शिकायत करना। वैसे जानकार बताते हैं कि एक ही जगह पर बैठकर काम करना, लंबे समय तक बैठे रहना, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें कमी आना, मोटापा हो क्योंकि आप फास्ट फूड बैठे बैठे कुछ स्नैकिंग टाइम हो गया, गलत पोस्चर, ये भी अगर उसमें बैठते हैं या खड़े होकर खाने वाले की बात है, पीठ दर्द का ये मेन रीज़न माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, उसको सामने रखकर काफ़ी समय गुजारते हैं, ऐसे में जो स्पाइन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उस पर जोर पड़ने की वजह से पीठ में दर्द ये शुरू हो जाता है। भाई इसके बारे में बहुत सारी बातें, अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है या फिर कुछ करने से आपको फायदा हुआ है तो 5499-1294 पर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि वो जो स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं उनको ये अक्सर इश्यूज आ ही जाती हैं। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट में लगातार बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसका इस्तेमाल से रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है। गैजेट्स के लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से टेक नेक, सुना आपने कभी? जी, गर्दन में दर्द टेक नेक और पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी बात हम करते रहेंगे। मजा आ रहा है जब हम और आप मिलकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उससे अगर अच्छा रिजल्ट निकले तो नथिंग लाइक इट।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: काफी बार देखा होगा कि जो यंगस्टर्स हैं या इवन अगर बात करें वो लोग जो प्रोफेशंस हैं वो इतनी देर तक बैठे रहते हैं कि हंचबैक्स हो जाती है, नहीं बैड पोस्चर, और फिर लगता है कि पीठ में दर्द क्यों है, गर्दन में दर्द क्यों है। हमने कहा ना टेक नेक, जब आप अपने फोन को लेकर एक एंगल पे बैठे रहते हैं और इतना सारा वेट जो आपका सर का है वो आता है सीधा नेक पर, बहुत सारा है सर। और कहते हैं शरीर का अधिक वजन रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन और जोड़ों पर दबाव बढ़ा सकता है। मोटापे की वजह से पेट और पीठ की जो मांसपेशियां होती है ना वो कमजोर होने से रीढ़ की हड्डी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, जिससे दर्द ज्यादा तेजी से होने लगता है। जरूरी कि जब आप बैठे या खड़े हो तो सीधे खड़े हो, बैठे भी तो सीधे बैठे, ऐसे नहीं कि आपको अब फोन देखना है बैठे बैठे। जब खाना खा रहे तो फोन को साइड में रखो ना, एंजॉय द फूड।

हर एक स्वाद का मजा लीजिए। और वहीं पर जब आप खड़े होते हैं तो फिर भी सीधा होके ऑफिस या घर में काम करते समय हर 30-40 मिनट में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, जहां पर आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और रेगुलर

0: टाइम निकल गया, एक घंटा दो घंटा व्हाट ऐसे ही बैठे बैठे। शरीर का वजन उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाले गद्दे पर सोएं, जहां पर कहते हैं ऑर्थोपेडिक, हाँ नियमित रूप से स्ट्रेचिंग और योगा करें। भारी चीजों को गलत तरीके से उठाने से बचें, अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह तो लेनी होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बड़ा बड़ा फायदा हो सकता है।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Mangalwar ka din, 9th of June, time check. Exactly 10 a.m. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आगे विधि माउन से मिलते हैं। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। पांच महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। ICT मंत्रालय जल्द ही प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के साथ परामर्श शुरू करेगा। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोंपलुमसर जिले के प्लेंदेपापाय में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मौशजवासियों ने भाग लिया। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटीमोनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रहे थे। ये मामला फरवरी 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कई

रुपए और विदेशी मुद्रा से संबंधित था। बचाव पक्ष ने इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया था, साथ ही जांच में हस्तक्षेप और मामले में अत्यधिक देरी के आरोप भी लगाए गए थे। और विदेश में चीनी नेता शी जिनपिंग प्योंगयांग की अपनी दो दिवसीय यात्रा का समापन कर रहे हैं, जो 2019 के बाद से उनकी उत्तर कोरिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। सोमवार सुबह जब वे वहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर और उत्साही भीड़ ने उनका अभिवादन किया। बाद में शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जहाँ उन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पुस दे फ्लाक में 79 साल की 79 years old की श्रीमती लीलावती नाहवा पैदाइशी नाम कोयला और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नारवा के घर पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस दे फ्लाक से उठाकर मौलुबें पॉइंट दे फ्लाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। रायरोड गांगोब में 68 साल के 68 years old के श्री बसंत लोलचंद जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रायरोड गांगोब से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

यानी गाना स्पेशली गोज आउट टू वर्षा जी और बहुत प्यार के साथ प्रीतम कहते हैं कि दोनों के दोनों शो को एंजॉय कर रहे हैं। जीना जी हमारे साथ दे रही हैं इटली से, अ बिग हेलो टू यू एज वेल फ्रॉम द होल आरएम2 टीम।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आप टेक्नोलॉजी के जमाना जहाँ पर टेक्नोलॉजी का आना जाना और चाहूंगा तो ये बताना कि जिंदगी के अंदर इतनी सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं कि लगता है कि कोई ना कोई तो घर पर है। हाँ, फिर चाहे कोई प्रोजेक्शन हो या फिर आपका कोई गैजेट का सिलेक्शन हो, सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं प्रोजेक्टर्स। भाई ऐसा है क्योंकि बहुत ही हैंडी होते हैं और आपको देखना है कि उसके जो ल्यूमेंस हैं, जितनी उसकी ब्राइटनेस है, दिन के टाइम पर भी वो अच्छी प्रोजेक्शन दे सकती है और वहीं पर आपके साथ जुड़ सकती है, वायरलेस कनेक्शन हो सकता है ब्लूटूथ फॉर ऑडियो। तो फिर काम करते करते किचन के अंदर बस आप एक दीवार को चुन लीजिए जहाँ पर आपको सीधी एक विजन मिलती है और उसके बाद प्रोजेक्टर से आपकी फेवरेट मूवी या फिर कोई भी चैनल जो आपके पास है वो चलाकर अपना काम कर सकते हैं और वहीं पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ एंटरटेनमेंट का साधन मिल जाए तो काम फटाफट हो ही जाता है ना। राइट, अगर हम बात करें आने वाले कुछ ऐसे प्रोजेक्टर्स के बारे में तो बहुत कमाल, यानी कि अब छोटे से छोटी इमेज से लेकर 220 इंच तक, आप सोचिए कमाल है ना। घर में अलग अलग तरह से इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए प्रोजेक्टर 360 डिग्री रोटेशन सिस्टम में है, यानी कि फिक्स स्क्रीन ना हो, दीवार हो, छत हो या फिर कोई भी ऐसी प्लेन जगह जहाँ पर आप इसको एक बेहतरीन पोर्टेबल प्रोजेक्टर ऑप्शन बना सकते हैं। भाई सेटअप की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर ऑटो फोकस होता है और उसके बाद जितनी उसकी लेंथ एंड ब्रेथ वो दीवार के साइज के हिसाब से फिट हो सकती है। बस आप बताएं कि फिर चाहे आपके कोई भी हो उसके अंदर प्रोजेक्शन के अंदर, कोई भी अगर आप चैनल सेलेक्ट करते हैं, चाहे आपका कोई पेड सब्सक्रिप्शन हो या फिर सीधा आप इंटरनेट पर जाकर कुछ भी चलाएंगे, अपने फ़ोन को ही कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ चलेगा एकदम बिंदास। ऐसी कुछ खबरें लेकर आएगा वापस बैक इन द शो विकास।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: आवे करीना किसे दे नाल प्यार मुंडिया तो बच।
4: Musty Morning Show.
1: Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: अच्छा, ऐसे मौसम में जहाँ पर ठंड थोड़ी सी होनी शुरू है लेकिन साथ में कमाल की सनलाइट, चलिए करते हैं फैशन स्टार्स के लिए कुछ स्पेशल
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: वेलकम टू आरएम2।

0: RM2 Musty Mornings Radio Musty.
1: ये फैशन जो पुलिस है चादरों घूमती रहती है और कोई ना कोई कमेंट पास ही हो जाता है कि ये तो अभी इन ट्रेंड नहीं है, लेकिन अभी के लिए क्या ट्रेंड में है चलिए जान लेते हैं। भाई जरूरी है कि अब जब धूप मस्त खिली हुई है, मौसम अच्छा हो, तो एक लाइट जैकेट या डेनिम शर्ट कैरी करना ये ठीक रहेगा, स्टाइल भी रहेगा और कम्फर्ट भी। फैशन टिप नंबर टू, लेयरिंग तो कमाल का हीरो है, यानी कि कूल टी शर्ट और ऊपर से एक लाइट कार्डिगन या फिर ओवर शर्ट पहनो और दिन भर वेदर प्रूफ रहो। धूप हो और सनग्लासेस नहीं, अरे ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे बॉलीवुड मूवी में आप बिना म्यूजिक के हो। सो अपने फेवरेट शेड्स जरूर पहनिए और कॉम्प्लीमेंट कीजिए जो भी आपने पहना हुआ है। वेदर में ऐसे वेदर में जहाँ पर थोड़ी ठंड है लेकिन कमाल की धूप निकलती है, पास्टल कलर्स कमाल के लगते हैं, स्काई ब्लू, मिंट ग्रीन या फिर सॉफ्ट पिंक, ऐसे शेड्स आपको फ्रेश और स्टाइलिश लुक देंगे। भाई सुबह की ठंडी हवा के लिए एक लाइट स्कार्फ परफेक्ट रहेगा और बोनस ये है कि आपकी लुक इंस्टेंटली और क्लासी लगने लगेगी। भाई गोल्डन रूल तो ये है कि कंफर्ट के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए फैशन को और फैशन के साथ कंफर्ट को भी, जो पहने उसमें कॉन्फिडेंट फील करें क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैशन स्टेटमेंट है।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: Radio Musty
3: in the mix.
2: Radio Musty feels a musty
3: in the mix.

0: दिन अक दिन क्या बात है। संजीव और वाइफ दीपा की तरफ से दो बेटियां हैं विमी एंड मेघा और पूरी फैमिली की तरफ से एनएस प्रोहा में बेरे हमारे साथ, थैंक यू सो मच। एंड साथी में रमेश सिंह पंजाब से, उन्होंने कहा कि गानों के साथ जो मजा आ रहा है वो तो कमाल है। अरे आपका साथ भी तो कितना बेमिसाल है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। यस
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: गुड मॉर्निंग, कहते हैं अगला गाना फॉर अब्दुल सारा बानो जी, जरूर आपके लिए। हैव अ नाइस डे, join the music.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio. Musty.
2: ये जो म्यूजिक के साथ नाता है, समझ में बस यही आता है कि इसके बिना कुछ हो नहीं पाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि म्यूजिक ऑन होता है तो फिर लगता है कि जैसे घर में कुछ चहल पहल हो रही है। और एक हम सफर है, एक साथी है, एक दोस्त है जो हमेशा 24/7 हमारे साथ है। RM2, थैंक यू सो मच दीपा जी। ब्यूटीफुल आपके जो ये थॉट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और सच कहा कि घर में अगर कुछ नहीं चल रहा हो ना, जैसे MBC रेडियो के साथ साथ MBC TV, तो फिर लगता है कि जैसे क्या हो गया कुछ आज, वो वाइब्रेशन नहीं है, वो एनर्जी का फ्लो नहीं है, सच है। और यहाँ पर हमारे साथ दे रहे हैं अंजलि, गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड कहते हैं कि आज सुबह में नाश्ता दबा के खाया, वेरी गुड, क्योंकि आज छुट्टी पर है तो वक्त मिल गया। अच्छा, ये भी है जब आप छुट्टी पर होते हैं तो काफ़ी लेजी होते हैं कि थोड़ा देर तक सो लें। और आजकल तो मौसम भी ऐसा है जहाँ पर लगता है कि स्नूज बटन मेरा फेवरेट बटन है, दबाते रहो सोते रहो। सच है। वहीं पर नंदनी जी आपका भी स्वागत, कहते हैं बस चाहते हैं कि आज हमारे लिए एक स्पेशल डे हो, अपनी फैमिली के साथ एक आउटिंग प्लान की है एंड गोइंग टू द बीच। सभी का एक साथ छुट्टी ले लेना काफी मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर मौका मिल गया है, डोंट लेट दिस गो, अब जो होना है वो होने दो। म्यूजिक के साथ ऐसे ही बिल्कुल मस्त रहो।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो। मस्ती।

0: हाँ कभी कभी पहली बार ही मिलके ही लगता है कि जैसे ये तो काफी समय से अपना एक जान पहचान का रिश्ता है। क्या करें, और म्यूजिक की बात तो कमाल। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं एमबीसी प्ले 1.0 तो बस आप जब पेमेंट करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, आपको उसको ओके करना है, उसके बाद ही आपकी पेमेंट विल गो थ्रू और उसके बाद आपके से होंगे सारे मैचेस वर्ल्ड कप 2026। स्टे ट्यून्ड
1: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: चलिए कनाल लेके जाएगा मैं सीधा 11 बजे के समाचारों की ओर, लेकिन बात करेंगे कुछ और, स्नीकर्स और रनिंग शूज। अरे साहब ऐसा ना कि जब मौसम अच्छा हो तो हर कोई कहता है यार चल थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं कहीं भागने दौड़ने, अब पसीना कमाते और वो माहौल और म्यूजिक साथ में हो तो फिर कमाल ही होता है। स्नीकर्स बेटर हैं या रनिंग शूज, चलिए मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, साथ जुड़े रहिए क्योंकि प्रोग्राम कंटिन्यूज टिल 12। यस यू लिसनिंग टू
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: नौजून ट्यूजडे का दिन स्टूडियो में आगे विधिमा लेकर संक्षिप समाचारों से मिलते हैं। नमस्कार
1: नमस्कार विकास सभी को नमस्कार। पांच महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष पहली जनवरी से पहली जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलुमसे जिले के प्लेंडीपापाई में समाप्त हो गया। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटीमोनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रही थी। और विदेश में फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण सोमवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो गई, जब दक्षिणी फिलीपींस के एक प्रांत में मुख्य रूप से भूकंप के कारण हुए भूस्खलन की वजह से कम 17 लोगों की जान चली गई। तो इन खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। ताहिरबाग सेंटर प्लान वेट पोटली में 90 साल के 90 years old के जनाब यूसुफ गुलाम मोहम्मद तुरावालालू इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे ताहिरबाग सेंटर प्लान वेट पोटली से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए रिश्ते की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट 3:30। राय रोड गांगुब में 68 साल के 68 years old के श्री बसंत लोलचंद, जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर राय रोड गांगुब से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस

0: उस दुफलाक में 79 साल की 79 years old की श्रीमती लीलावती नाहवा पैदाशी नाम को इलाव जो शांति नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नागवा के घर पंचम रोड लापोत फोवदाउस पर दुफलाक से उठाकर मोलोबें पॉइंट दुफलाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

इस आवे द थर्ड आवर 11:06 9th of June ऑलरेडी और धीरे धीरे जहाँ पर महीना खत्म हो रहा है वहीं पर ये साल भी बिल्कुल मिडिल में प्लानिंग बिल्कुल रेडी रखो काम करते रहो मेहनत करते रहो जरूर हो गया आबाद कौन करेगा बर्बाद

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा कुछ टाइम पहले बात करते हैं हम स्नीकर्स और रनिंग शूज़ के बारे में। आप कहें कि हाँ तो दोनों ठीक ही हैं, जो भी पहन लो। हाँ लेकिन सोचिए अगर गाड़ी हो आपके पास, हाँ अब एक सलून कार, एक एसयूवी कार, एक 4x4 का, नॉर्मल रोड एक बात है और फिर ऑफ रोड अलग बात है। ऐसे ही एक डिफरेंस पैदा होता है स्नीकर्स एंड रनिंग शूज़ में। वैसे बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और बहुत ही सारी वैरायटी और चॉइस होती है। देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन काम अलग अलग होते हैं। मजी बात है रनिंग शूज़ तो रनिंग के लिए होते हैं, लेकिन पहली चीज़ जो लोग नोटिस करते हैं कि प्रॉपर रनिंग शू लाइट होना चाहिए। हाँ ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, तो ये बहुत सारा उसके अंदर वक्त लगा है कि उनको लाइट बनाए, सॉफ्ट बनाए, ज़्यादा कंफर्टेबल।

0: बनाए कि सपोर्ट मिलता रहे और जो उसका सोल होता ना वो ज़्यादा वो थिक होता है, इसलिए क्योंकि कुशनिंग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप भागते हैं, अब सोचिए जितना प्रेशर पड़ता है आपके जॉइंट्स पर जब भी आप लैंड करते हैं, और ये अगर 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, 1000, मतलब जितना भी आप भागते हैं अगर वो प्रेशर पड़ता रहे आपके जॉइंट्स पर तो कैसा रहेगा। इसलिए कोशिश रहती है कि इनका काम बिल्कुल ठीक हो, अच्छे भी दिखते हैं, साथ साथ में आप जितना घूमें आपको कंफर्ट मिले। भाई रेगुलर स्नीकर्स है ना, तो उनमें वो कंफर्ट नहीं होता, वो स्टाइल के लिए होते हैं कि आप बस थोड़ा सा घूमें वापस आ गए। हाँ, अगर पहनकर आप भागने लगे तो आपको वो दर्द महसूस हो सकता है, आपकी नीज ज़्यादा स्टिफ हो सकती हैं, आप ज़्यादा थक सकते हैं, इसलिए बनाए गए हैं रनिंग शूज। चलिए बात करेंगे, और आप भी बताइए कि आप जब भागने जाते हैं क्या रोड पे भागते हैं या फिर घास पर, क्योंकि घास पर आपको कुशनिंग मिलती है, रोड पर काफ़ी सख्त और फिर आपके जॉइंट्स पर सीधा असर। चलिए निकलते हैं एक और डगरी, एक और नगर साथ देते जाइए।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, कुछ टाइम पहले हम बात करते, वैसे कई लोग डिफरेंस समझते नहीं, हाँ स्नीकर्स हो या फिर रनिंग शूज हो, भाई इसके अंदर ज़्यादा फर्क तो होता ही होता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप अपने पूरे दिन में करते क्या हो। खाली बस पैदल चलकर कम्यूट करते हो, जैसे यहाँ से वहाँ जाना है काम करने, या शॉपिंग या ट्रैवलिंग या फिर ऑफिस का काम, स्नीकर्स इसके लिए ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं रनिंग शूज से, क्योंकि वो बहुत कैजुअल सी लुक आती है। लेकिन अगर आप जॉगिंग करते हैं और वो भी रेगुलरली, चाहे ट्रेडमिल पर बहुत बारी एक हफ्ते में, या फिर आप किसी रेस के लिए ट्रेन कर रहे हो, या फिर किसी एक्टिविटी के लिए जहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रनिंग करनी है, तो रनिंग शूज़ तो ये तो स्मार्ट चॉइस हो जाएगी ना। ये मार्केटिंग की बात नहीं है, ये अपनी बॉडी को सपोर्ट देना है। ये सच बात है। देखिए, आपकी जो नीज है ना, आपको कहेंगे थैंक यू उसे, क्योंकि आप अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आपके जॉइंट्स पर कितना प्रेशर आता है। जब आप रोड पर भागते हैं, पेवमेंट पर भागते हैं, इवन ट्रेडमिल पर, तो जो नीज होती है ना, एंकल्स, वो ले रही है सारी बीटिंग हर एक स्टेप में। जो अच्छे रनिंग शूज होते हैं वो जो इम्पैक्ट हो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। भाई कोई भी जूता ऐसा नहीं कि आपके स्ट्रेस को, जो जॉइंट्स पर पड़ता है, उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दे, लेकिन जो प्रॉपर कुशनिंग है उससे फर्क तो हो सकता है, यानी कि यू फील स्मूदर एंड ज्यादा कंफर्टेबल ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए भी। तो अगर आपने अभी सोचा है कि क्या कर दें, तो जाकर आप पहले उसको समझिए कि इसमें ज्यादा फोकस कंफर्ट पे है, या फिर कुछ ऐसे डिजाइन किए हैं कि फ्लैट फीट हैं उनके लिए, या फिर स्पीड के लिए। ऐसे अलग अलग शूज़ हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये नहीं कि उसने खरीदा तो मैं भी, जिम के लिए हाँ चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, लिफ्टिंग हैवी वेट्स, तो फ्लैटर शूज़ ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं, नॉर्मल सी बात है।

0: जैसे आप देखते हैं जिम जो जाते हैं वो दो पेयर ऑफ शूज लेके जाते हैं, एक कार्डियो के लिए और एक स्ट्रेंथ के लिए। अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी नीड।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: ओ मैं क्या पापा जी, थोड़ी सी मस्ती डालते हैं, थोड़ा सा ढोल झोल बजाते हैं थोड़ा सा। अरे मैं कह रहा हूँ पंजाबी टच, क्या कह रहे हो ऑलरेडी टू मच? ओ नहीं जी,

0: अच्छा भैया, क्या मूवी चल रही है वेलकम टू द जंगल? उसके अंदर एक गाना है ऊंचा लंबा कद, और लोग कह रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ कि कटरीना वो इज मच मच बेटर। सुनिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर देखा नहीं है वीडियो तो प्रॉब्ली इट्स गोना बी एन अपडेट।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: OMG,
1: रेडियो मस्ती।
0: हाँ, ये रफ्तार है तो चलेगी फ्रॉम 4 to 7, और अभी थोड़ी देर में इट्स गोना बी बॉलीवुड का अलग स्टाइल, रेट्रो रिदम।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अरे आप कहते हैं प्लीज एक प्यासा गाना फॉर हस्बैंड पुष्कर. पुष्कर मुझे एक बात याद आई, वो एक पिक्चर थी ना जिसमें था भास्कर. उसको कहते हैं बसकर. पुष्कर कभी कभी बोलती हैं आप अपने पति को पुष्कर लक को पुश मत कर, लेकिन कभी कभी छेड़खानी में बड़ा मजा आता है. ऑलराइट, कहते सभी लेडीज के लिए गुड जेंटलमैन स्टिल एग्जिस्ट. चूज वाइजली, लव इज ब्यूटीफुल व्हेन यू फाइंड द राइट वन. क्या बात है दिशा जी. कहते सभी फैमिली के नाम, किरुदर फैमिली है, गुदी फैमिली है, कॉटेज से कुछ पापा से. हेलो, मजा आ गया इस गाने को सुनकर. ये कहती रीति, और आई थैंक यू सो मच रीति इस मैसेज के लिए. हम तो चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग सब कुछ बिल्कुल ब्राइट हो जाए और आप होल्ड ऑन टाइट हो जाए फॉर दिस लवली म्यूजिकल जर्नी.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: रिमाइंडर अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं MBC Play 1.0 तो याद रखें कि आपको जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन आती है, उसको ओके करना है, उसके बाद आपकी पेमेंट्स गोना गो थ्रू, बस उसके बाद आप हो जाएंगे बिल्कुल शुरू देखने के लिए सारे वर्ल्ड कप के मैचेस.
1: Avec MBC Play, tu bannes 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026 avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Obansen Premium New World TV qui peut disponible au MBC Play à partir des 5 hein, pour 10-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents c'est le fort. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
2: RM2, Radio Mastin.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

तो जाने के वक्त और बस थोड़ी देर में आ रही है साथ देने के लिए मनीषमा इन रेट्रो रिदम. एंजॉय द सॉन्ग्स, एंजॉय द एवरग्रीन सुपर हिट गोल्डन सॉन्ग्स. खाने पीने का प्लान शुभ आहार दोस्ती.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: घर मिला लीजिए, दिन के 12 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ विद्यमान। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार मनीषमा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। गुजबा में मोटरवे पर हुए एक वायरल विवाद के मामले में पीड़ित के आधिकारिक शिकायत के बाद संदिग्ध आइवान मोदेस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस घटना पर एक विभागीय जाँच भी शुरू की है ताकि मौके पर मौजूद अधिकारियों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों की जाँच की जा सके और ये निर्धारित किया जा सके की गई कार्रवाई पेशेवर दायित्वों और लागू परिचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप थी या नहीं। संदिग्ध के खिलाफ कम से कम 3 अस्थायी आरोप लगाए गए हैं। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष पहली जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलुमसे जिले के प्लेंडेपापाय में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मॉरिशस वासियों ने भाग लिया। और विदेश में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के टायर शहर के लिए एक नया निकासी आदेश जारी किया है। यह आदेश ईरान द्वारा लेबनान पर हमलों को रोकने के आह्वान के एक दिन बाद आया है। एक इजरायली प्रवक्ता का कहना है कि वे पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हिजबुल्ला पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। ताहिरबाग सेंटर प्लेनवेद पोटली में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब यूसुफ गुलाम मोहम्मद तुरावालालू इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दोपहर 3:30 बजे ताहिरबाग सेंटर प्लेनवेद पोटली से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए रिश्ते की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3:30। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती नागवा, पैदाइशी नाम कोयला और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नागवा के घर पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर मौलुबा पॉइंट दे फ्लाक की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। राय रोड कांगुब में 68 साल के 68

years old के श्री बसंत लोलचंद, जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रारोड गांव से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे अगर देखा जाए तो हर कोई एक मुसाफिर है, अपनी जिंदगी की राह पर अकेले चल पड़ रहे हैं। वैसे साथ में कोई कोई प्यारा इंसान आ जाता है हमारी जिंदगी के साथ निभाने के लिए, वैसे तो जिंदगी जैसे कलरफुल हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो बता दो, डेस्टिनेशन का नाम तो बता दो। वैसे यहाँ पर थोड़ी देर आप ठहर जाइए, एंजॉय कीजिएगा हमारी सिलेक्शन को। यहाँ पर वापस मानिश माँ आ रही हैं आपके साथ नहाने के लिए 12 से 2 में। जी हाँ, रेट्रो दम, जहाँ पर डान में मेरी लेन जाना मुझको बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन हाँ ये सेगमेंट मैं वेट करती हूँ हर रोज़, और यहाँ पर आपका साथ जो निभाने आ चुकी हैं मनीष माँ। जी हाँ, 2 बजे तक यूँ ही प्यारे प्यारे गानों का लुफ्त उठाती रहिएगा। ओके जी, वेलकम हियर, गुड आफ्टरनून।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti
2: देखा जाए तो इस टाइम तो बहुत सारे लोग जुड़े रहते ही हैं, कभी तो ड्राइव करने के लिए फॉर लंच और कोई तो लंच बनाते बनाते हैं हमारे साथ निभा रहे हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे आंटीज हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्ते पे सत्ता मूवी से मांगा है ये गाना, मौसम मस्ताना रस्तान जाना फॉर माई फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, शिमला है काजल बृंदा इंद्रा शोभा कविता संगीता एंड मून के लिए भी थैंक यू। वैसे जो भी काम कर रहे हैं आप उसके लिए हम कहना चाहते हैं बोंकुहाश, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल आफ्टरनून एट देयर।

0: Retro Rhythm.
1: L-O-V-E, वैसे love, love, love, आपके दिल में, आपके जिंदगी में बस प्यार ही प्यार भरा रहे. वैसे यहाँ पर Dee from Paris here. Yesterday was the birthday of my beloved daughter Anjo. वैसे lots of love, mainly good health on behalf of dad Dave है. And mom Amrita, Ivan, Amish, Angelique, Alana, Alessia, can you please play a beautiful song on this auspicious occasion? वैसे blessed birthday, exactly your belated birthday. And यहाँ पर बहुत सारे messages. गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं ठीक हूँ ललिता जीतन. लंच टाइम है, बना पिची गजाटी यू. हेलो आर एम टू माई ब्यूटिफुल नीस ममता लोबिन भिखारी का बर्थडे है आज. एंड डेडिकेशन कमिंग फ्रॉम पुपू साधना लोबिन, इमृत एंड पुपा मुकेश इमृत ऑफ लाल माची, लॉट्स ऑफ लव गजाटी यू. बहना नमस्ते, कैसे आप? शाम डिविजन जी एंजॉइंग एट होम रही ना? और यहाँ पर रेडियो मस्ती, गुड आफ्टरनून अब्दुल. एंड सायरा बानो की तरफ से मैसेज आया है, हेलो जी. विश्वानी दुमन फ्रॉम वाकुआ, अभी मैं बढ़िया बढ़िया गाने सुन रही हूँ. एक पुराना गीत मंदिर सॉन्ग, ओके वो भी तो दिन याद है. ये वाला गाना हम बेशक चलाएंगे. इंदिरा शरदा और सहेली है नीला प्रतिभा शोभा और गीता गिराधर और सो जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सके तो हम चला देंगे आपके नाम ये अगला गाना.
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

जाए, चलो हम सदा के लिए. सदा के लिए कहाँ होता है ये सब कुछ, बस पलक झपकते ही सब कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी. यहाँ पर लव यू टू मनीषु एंड ब्लेसिंग्स एंड हग्स टू यू रेडियो मस्ती फैमिली फ्रॉम समारा. एंड हेलो जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल दोस ट्यूनिंग टू आर इनटू रेडियो मस्ती. वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने अपनों को मिस कर रहे हैं गानों के साथ. वैसे यही तो हम चाहते हैं कि यार आप अपनी यादों के दरवाजे को खुला रखिए.

0: जी, और हर एक मिनट को, हर एक बीट को आप एंजॉय कीजिएगा सर। जो गाने हैं आपके बस यादों से जुड़े ही होते हैं।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
0: चलिए आपसे प्यारा और कौन है, आपके मैसेजेस जो इतने प्यारे हैं भेजते रहिएगा 5499124 पर शैलेंद्र सिंह की आवाज में। होगा तुमसे प्यारा कौन।

0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए जी, किशोर कुमार का ये गाना आखिरी गाना फॉर दिस फर्स्ट आवर। मिलते हैं सेकंड आवर में 1 बजे के समाचारों के बाद।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?

0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या।
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?

0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
3: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
4: Din ke ek baja hai. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अशिता के साथ। नमस्कार आपको।
5: नमस्कार मनीष, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रही मामले की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। उन पर 23 आरोप लगाए गए थे, जिनमें 5 लाख मॉरिशस रुपए की निर्धारित सीमा से अधिक नकद पेमेंट स्वीकार करने का आरोप शामिल था। हालांकि अदालत का मानना है कि मुकदमे को जारी रखना न्याय की भावना के विरुद्ध होगा, क्योंकि पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई गई हैं। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी DPP के कार्यालय ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। गोशबाम मोटरवे पर हुई मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संदिग्ध आइवान मुदस्त को पीड़ित की आधिकारिक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच पुलिस ने विभागीय जांच शुरू की है, ताकि घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों की कार्रवाई की परिस्थितियों की जांच की जा सके और ये निर्धारित किया जा सके कि उनके कदम पेशेवर दायित्वों तथा प्रचलित परिचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप थे या नहीं। आइवान मोदेस्त के खिलाफ कम से कम 3 अस्थायी आरोप दर्ज की गई है। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोंसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाऊ विकास की गारंटी माना जाता है, जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोंसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। गंगा तालाब प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल के कई घटनाक्रमों के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले आगंतुकों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से विनियमित करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से कल कला एवं संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में स्थल का दौरा किया गया, ताकि प्रस्तावित उपायों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सैकड़ों झटके महसूस किए गए हैं। इस आपदा में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। मिंदनाओ द्वीप पर हुई तबाही की वास्तविक तस्वीर अब सामने आ रही है, क्योंकि राहत और बचाव दल तटीय शहरों और कस्बों तक पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या, जो फिलहाल 37 है, और बढ़ सकती है। 487 लोग घायल बताए गए हैं। भूकंप के कारण कई इमारतें ढह

0: गई हैं तथा सड़कें या तो दरारों से क्षतिग्रस्त हो गई हैं या भूस्खलन के मलबे में दब गई हैं। द्वीप के बड़े हिस्सों में अभी भी बिजली और दूरसंचार सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं। कल सुबह आए इस भूकंप के बाद इंडोनेशिया, मिंदनाओ के दक्षिणी क्षेत्रों और जापान के प्रशांत तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार लगभग 2000 घर और 6000 सरकारी विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शुभ समाचार सुनिए। प्लेनवेयत पोर्ट लुइस में 90 साल के 90 इयर्स ओल्ड के जनाब यूसुफ गुलाम मोहम्मद तुगावा, जिन्हें लालू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा ताहिरबाग सेंटर से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए आज 3:30 बजे गिश्तिया मस्जिद ले जाया जाएगी, फिर दफनाने के लिए गिश्तिया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड गोंगुब में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री बसंत लोलचन, जिन्हें सुनील के नाम से बिल्कुल ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर गोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दु फ्लाक में 79 ईयर्स ओल्ड की 69 साल की श्रीमती लीलावती नाहुआ। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दु फ्लाक में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती नाहुआ पैदाश्रम कोयला, जिन्हें शांति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नाहुआ के घर लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दु फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौलुबीन पॉइंट दु फ्लाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2.

0: बात है सोनू निगम की आवाज, मलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है इन द सेकंड आवर ऑफ योर रेट्रो रिदम। वैसे रेट्रो रिदम में थोड़ी सी बदलाव हुआ, थोड़ी सी 90s मिक्स विद 80s और सो लेट 80s। हम जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपके मैसेजेस एंड डेडिकेशन है, हम भी इंतहा प्यार करते हैं आप लोगों से और इंतजार भी कर रहे हैं आप सभी का ऑन दिस नंबर 5499124 पर।
1: RM2 Radio Musti.
2: Communiqué depuis Ministère Agro-Industrie. D'après Animal Diseases Act, Ministère paie un fonds public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou sa centre quarantaine qui se bien enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.gouvernement.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
1: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: चलिए जी, 90s का सिलसिला तो चल पड़ा सभी के नाम वैसे। यहाँ पर मेरे पति जी पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं अभी के लिए, अगला गाना उसके नाम भी गुड आफ्टरनून रेडियो मस्टी। वैसे ये जो टीम है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बॉम्बू से धनेश्वर, पत्नी सुनीता के साथ रानी मीना, ऋषि, तहान, हंसवी फ्रॉम देवदोस सनीचर एंड कौले फैमिली।

0: प्यार मोहब्बत की बातें तो चलती रहेगी यहाँ पर ऑन एंड टू रेडियो मस्ती पर. हेलो जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग माय डॉटर सुस्ती एंड सोनी लोहे कमलेश ग्रैंड चिल्ड्रन शिशना योहान एंड रोहान फ्रॉम रागिनी मौसम सॉन्ग सुस्ती की तरफ से मैसेज आया है. अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक का, वैसे यहाँ पर हम अगला गाना चलाएंगे. बेशक आप सभी के नाम प्यार वाला गाना पूछो, जरा पूछो.
1: Radio Musti.
2: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 hein, pour 10-300 roupies. Et coupé pour sa package là, 6 cents c'est le fort. Ou pourquoi pas suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
3: L'action peut continuer d'encore finir la compétition débat climat. Bonnes élèves depuis 8 collèges qui finissent sélectionnés, finissent parés pour porter à toute l'opinion le changement climatique. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 13 juin au MBCN et MBCSAT à partir de 8h30 à soir.
1: RM2 Radio Musti.
4: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti. Radio.

0: दिल लगाने की सजा आप क्या दोगे? पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है? Here we go, ladies and gentlemen, free messages.
1: Retro rhythm.
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर गाना मांगा है तनवीर, आयशा, तेजल, रहना, रयान, करुणा, कामिनी, तरस चंद एंड कमला गंगा भी सुन, अनिष्ठा ऑफ कैट्रोबोन की तरफ से मैसेज आया है. हेलो जी, गुड आफ्टरनून, आशा करती हूँ आप हमारे गाने के सिलेक्शंस को एंजॉय भी कर रहे हैं. नमस्ते जी, विद्यानी हियर सेबस्तपुल से, साथ निभाई ये गाना मेरे लिए, गीतेशा के लिए भी, और एक नाम आधा अधूरा आ गया ये मैसेज, तो बात नहीं फिर से भेजिएगा. यहाँ पर ज्योति और शत बिना इस नेक्स्ट सॉन्ग मांग रही है आशनी, रेखा, सुरेखा एंड मडो फैमिली एंड फॉर यू ऑल्सो. क्या बात है, बड़े स्वीट हो आप जी. नमस्ते जी, द बर्थडे फ्रॉम माई हबी. अच्छा जी, आपके पति का जन्मदिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं. जय विश्वनाथ को विश करते हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. अच्छा, 12th of June को होगा, वेरी गुड. तो एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे, ग्रेटफुल इफ यू कैन सेंड अ हैप्पी बर्थडे टू हिम, स्पेशल स्पेशल विश फॉर हिम. अच्छा जी, देखेंगे. और अभी के लिए ये बर्थडे वीक है, आप एंजॉय कीजिएगा, प्लानिंग सब कुछ चल रहा है ना ठीक से. तो अभी के लिए अगला गाना स्पेशली फॉर ऑल दोस्त जो कि नाचने के मूड में है. तो चलिए जी, यहाँ पर 1:45 होने को भी है और मेरा प्रिया घर आया, राम जी याराना मूवी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और ऑफ कोर्स स्पेशली फॉर ऑल दोस ट्यूनिंग टू आरएन2 रेडियो मस्ती. हियर वी गो,
1: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2.
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
7: नमस्कार प्यारे श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वर्षों के दौरान कृषि भूमि की उर्वरकता प्रभावित हुई है। सरकार अब जैविक पदार्थों, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार की गई रणनीतिक योजना में कृषि पारिस्थितिकी को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। फ्लाक में स्थित फागे का मॉडल फॉर्म 100% जैविक कृषि पद्धतियों का एक ठोस उदाहरण है, जिन्हें अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मॉडल फॉर्म नवाचारी और पर्यावरण अनुकूल कृषि टेक्निकों का उपयोग करता है, जो मिट्टी को एक मूल्यवान संसाधन में बदलकर स्वस्थ सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करती है। नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा को विकेंद्रीकृत करना यानी डिसेंट्रलाइज करना, प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा बढ़ाना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप टेक्निकी उपकरण उपलब्ध कराना, इन सभी प्रस्तावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। दृष्टिहीनों के लिए समर्पित शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन सरकार के एजेंडा में शामिल है। लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड के प्रशासन ने पिछले सप्ताह सरकार को इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ये वर्तमान ब्रिटिश संगीत जगत के सबसे चर्चित समूहों में से एक है। जाज, आफ्रोबीट और हाई लाइफ संगीत के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध संगीत समूह कोकोको ने 6 जून को पहली बार मॉरिशस में प्रस्तुति दी। एस शिफोंसे दे मोरिस में आयोजित ये कार्यक्रम उनके क्षेत्रीय दौरे के समापन पर हुआ, जिसने स्थानीय दर्शकों का भरपूर दिल जीता। समूह की प्रस्तुति को दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली और ये यानी कि दर्शकों का शानदार प्रतिक्रिया मिली और ये संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार सांस्कृतिक आयोजन साबित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में सशस्त्र डाकुओं ने दर्जनों गांव वालों का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्हें संभावित शांति वार्ता के संबंध में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस घटना ने क्षेत्र की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को उजागर कर दिया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार रविवार को उत्तर पश्चिमी जम्फारा राज्य के मरादून क्षेत्र में स्थित मगामीन डिगी गांव के निकट जंगल में आयोजित एक बैठक के दौरान 29 लोगों का अपहरण कर लिया गया। हालांकि कुछ स्थानीय निवासियों और अधिकारियों का मानना है कि अपहरण लोगों की संख्या 50 तक हो सकती है। माना जा रहा है कि पीड़ित लोग एक डाकू सरगना के रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे थे ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके और समुदाय पर लगाए गए प्रतिबंधों में राहत मिल सके। और अंत में बात करते हैं हम फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत अब केवल 2 दिन दूर है। इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप टूर्नामेंट, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 104 से अधिक मैच खेले जाएंगे। याद रखिए, गुरुवार 11 जून से शुरू होगा ये विश्व मुकाबला। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: Choc sans chansonnier. Rarud petit belia me bag me. Rarud petit belia me bag me. 68 साल के 68 years old के जनाब रजब खान जुहूर, जनाब रजब खान जुहूर जिन्हें जानू बुशे के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनकी बेगम सबीना जुहूर के मकान मेबक से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट बोक्यूस से रिविया दी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

So well, that was Uncha Lamba Kad और ये गाना तो पिक्चराइज हुआ था अक्षय कुमार एंड कैटरीना कैफ पे, लेकिन अब एक बार फिर इस गाने को हम देख रहे हैं और अब इसके इस बार ये पिक्चराइज हुआ है ऑन दिशा पटानी एंड अक्षय कुमार. ओह हो, फिल्म है वेलकम टू दी जंगल. लेकिन हम तो आपको वेलकम कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. वेल फ्रेंड्स, मैं हूं परी आपके साथ. 2:09 हो गए हैं ट्यूजडे आफ्टरनून 9th of June. हाउ इज द जोश? आई डू होप दैट आपका जोश बना हुआ है. ट्यूजडे आ गया है यानी मंडे को हमने कह दिया है गुड बाय. हफ्ते का दूसरा दिन, लेट्स मेक इट स्पेशल आप सभी के लिए. वी टाउन की लेटेस्ट गर्मा गर्म खबरें लेकर आई हूँ आपके लिए और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. सो अगर जुड़े हुए हैं हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ, सो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल ये हम तक पहुंचाना तो बनता है. सो वेल फ्रेंड्स, रहेगा आपका इंतजार ऑन 5499-1294 टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन 90s का एक ब्यूटीफुल मैशअप आप सभी के नाम. एंजॉय दिस वन.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, अब टाइम है बी राउंड की एक अपडेट आप तक पहुंचाने का। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता का प्रमोशन कर रही है और इसी बीच उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह के बैन के मामले में बात की थी। वहीं अब एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के पेडी में विवादित सीन्स को लेकर भी बड़ी बात कह रही है। एक्ट्रेस को एक अहम सलाह दी है और चलिए जानते हैं कंगना ने इस मामले पर आखिरकार अपनी कौन सी राय दी है। तो जाह्नवी कपूर इन दिनों साउथ एक्टर रामचरण के साथ फिल्म पेडी में नजर आ रही हैं और हालांकि एक्ट्रेस को पेडी में देखने के बाद फैंस ये कह रहे हैं कि रामचरण के सामने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया है, यानी कि उनके किरदार का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो बस हीरो की जरूरत के हिसाब से वो खुद को ढाल लेती है। और इस मामले पर कंगना रनौत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कंगना ने कहा कि एक्ट्रेस को अगर इससे तकलीफ है तो वो खुद भी कह सकती है और ये बता सकती है कि ये सीन उन्हें सही नहीं लग रहा है। उन्होंने आगे ऐड किया कि उन्होंने देखा है कि लोग सेट पर इस तरह से सोचते हैं कि ओ ये वाला शॉट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन एक महिला के तौर पर वो अपना पक्ष रख सकती है और मेकर्स को कह सकती है कि जो सीन है वो अगर उन्हें ठीक नहीं लग रहा तो वो उसे ठीक से शूट करें या फिर अपनी जो राय है उस मामले में ज़रूर सामने रखे। तो उनका कहना है कि शायद जाह्नवी कपूर ने इस पर कोई भी एतराज़ नहीं जताया, तभी उन्हें इस तरह पेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है उनके इस रोल को लेकर, जहां पर कह रहे हैं कि जाह्नवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है इन द फिल्म पेडी।
1: RM2
0: Radio Musty feels a musty।
2: सो वेल दोस्तों, यहाँ पर ढिंडोरा पीटते हुए हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स आफ्टरनून टाइम, 2:36 हो गए हैं और यहाँ पर स्टूडियो में इतनी आवाज इसीलिए है क्योंकि हमारा स्टूडियो आज काफी भरा भरा है। वेदिता है, पूनम है, एंड वी सी दैट यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफी एंजॉयमेंट चल रही है। और चलिए दोस्तों, आपके इस आफ्टरनून टाइम में हम भी थोड़ा सा तड़का लगा रहे हैं बॉलीवुड का। सो साथ देते रहिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musti. Feels a Musti.
2: आइए जानते हैं MBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका. Step 1. सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल. स्टेप 2. अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा. ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी. यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे. और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा. ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन. तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन. अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स. ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800.
0: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: So well friends, ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल गाने अगर आप भी सुनना चाहते हैं, स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. इट्स योर बॉम्बे टॉकीज, मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसा.
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
2: 103.5.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा को विकेंद्रीकृत करना यानी डिसेंट्रलाइज करना, प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा बढ़ाना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना, इन सभी प्रस्तावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। दृष्टिहीन वालों के लिए समर्पित शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन सरकार के एजेंडा में शामिल है। लुईस लाजस ट्रस्ट फंड के प्रशासन ने पिछले सप्ताह सरकार को इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाऊ विकास की गारंटी माना जाता है, जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। गंगा तालाब प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल के कई घटनाक्रमों के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थान पर आने वाले आगंतुकों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से विनियमित करना चाहती हैं। इसी उद्देश्य से कल कला एवं संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में स्थल का दौरा किया गया, ताकि प्रस्तावित उपायों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सके। ये वर्तमान ब्रिटिश संगीत जगत के सबसे चर्चित समूहों में से एक हैं। जाज, आफ्रोबीट और हाई लाइफ संगीत के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध संगीत समूह कोको ने 6 जून को पहली बार मॉरिशस में प्रस्तुति दी। एस्यू फ्रांसे दे मॉरिस में आयोजित ये कार्यक्रम उनके क्षेत्रीय दौरे के समापन पर हुआ, जिसने स्थानीय दर्शकों का भरपूर दिल जीता। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इसराइल ने कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया और राजनीतिक संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ उसका युद्ध लेबनान में जारी रहेगा। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे, जो ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद अमरीकी इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद हुआ था। इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर एक हवाई अभियान चलाया, जिसमें 3,600 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें कई नागरिक भी शामिल हैं। साथ ही इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जहां कई गांव पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बासेन रोड रिवियर जोरोंपो में 70 साल के 70 years old के जनाब फिरोज मेहराली, जिन्हें फिरोज के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनकी बेगम सफीदा मेहराली के मकान रिवियर जोरोंपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट लास्को का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में 77 साल के 77 years old के श्री जय प्रकाशस रामसरन, जिन्हें जगदीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शांतिबाई रामसरन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। सुल्फिगनो नंबर पाँच वाकुआ में 68 साल के 68 years old के श्री धर्मरोध देवी, जिन्हें राजेश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे कुशल देवी के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी।

0: एंड टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, next hour में आप सभी का welcome 3:14 हो गए हैं and I do hope that you are enjoying your afternoon time. वैसे tea time तो हो चुका है और tea time के साथ we have latest Bollywood updates जो हम आपके लिए लेकर आए हैं. So it's time for your Bombay Talkies. मैं हूँ परी आपके साथ till 4 PM गर्मा गर्म खबरें and some latest Bollywood tracks. अभी के लिए जो next track है it's a special one जो आजकल काफी popular चल रहा है from the film Dhurandhar and this one goes out for 3 special people जो इस वक्त हमारे साथ studio में है. So goes out for Rudrani, for Bharti and for Mahavir. इस वक्त हमारे साथ connected हैं, so we have this beautiful track coming up आपके नाम and equally goes out for all the listeners of RM2 Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti in the mix. Radio

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: सो वेल धुरंधर एक ऐसी फिल्म जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं इस फिल्म ने और काफी सारे पैसे अपने नाम कर लिए. अभी के लिए उसी फिल्म का एक और गाना जिसे गाया है हमारे यहाँ पर शाश्वत सचदेव ने, और साथ ही से हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम शहजाद अली की आवाज़ भी, एंड इक्वली गुजार फॉर महावीर जिस गाने को सुनना चाहते थे. साथ ही हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हैव अ वंडरफुल टाइम. अभी के लिए तो आपकी आफ्टरनून को बना रहे हैं खास एंड स्पेशल विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स, एंड साथ में थोड़ी ही देर में कुछ लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें दैट आज बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस 41 इयर्स की हो गई है और इस खास मौके पर एक्ट्रेस की फैमिली और दोस्तों ने खास अंदाज में बर्थडे विश किया और उनकी सास प्रिया आहूजा, पापा अनिल कपूर और करीना कपूर ने सोनम कपूर के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट शेयर किए। सोनम की सास प्रिया आहूजा ने इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर के साथ कई फोटोज शेयर की जिसमें वो परिवार साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रिया आहूजा ने सोनम कपूर के लिए प्यार भरा कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा, हमारी प्यारी सोनम वो सुपर मॉम है और हमारे प्यारे वायु और रुद्र की बहुत अच्छे से परवरिश कर रही है। साथ ही यहाँ पर जन्मदिन की खास बधाइयाँ उन तक पहुँचाई। साथ ही यहाँ पर उनके पापा ने इवन करीना कपूर, जिनके साथ वो एक बहुत ही खास बॉन्ड शेयर करती हैं, उन्होंने भी उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दी ऑन हर स्पेशल डे। सो एक्ट्रेस सोनम कपूर अब तो बन चुकी है प्राउड ममा ऑफ टू सन्स एंड आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना 41st बर्थडे।
1: RM2 Radio Musty In the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

So, चलिए दोस्तों आज तो हमारा स्टूडियो काफी भरा भरा था. यहाँ पर कुछ प्यारे प्यारे लोग आए थे जिनको हमने थोड़ा सा ज्ञान दिया अबाउट रेडियो. लेकिन इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं. सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर. सो आज डीजे डेविसन साथ दे रहे हैं आप लाल माती से और कहते हैं दैट इट्स अ स्पेशल स्पेशल डे आपके लिए. आई गेस इट्स योर बर्थडे आज. सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू डेविसन. आपके लिए बहुत सारी गुड विशेज एंड थैंक यू सो मच आपने चुना आरएम टू रेडियो मस्ती को. साथ ही यहाँ पर एक प्यारा सा गाना इसे आप डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. ये है हमारी प्यारी सी रोशनी. सो थैंक यू सो मच रोशनी हमारा साथ देने के लिए. एंड कुमार देवीचंद कहते हैं बैक फ्रॉम कॉलेज लिसनिंग टू द वंडरफुल शो. गर्मा गर्म चाय इलायची वाली चाय साथ में है और फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हैं आरएम टू रेडियो मस्ती विदाउट फॉरगेटिंग पापा श्याम देवीचंद. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. एंड वी ऑल्सो हैव रितेश श्यामा रानी थनीश आदर्श निष्ठा जयश्री युषरा वशिष राधा याशना एंड सभी जीवन परिवार जो बेल ऐसे हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं दैट फैंटास्टिक टीम है और एवरीडे इन गानों को सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है. जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. और कहते हैं कि ना मेरा दिल बुरा था ना उसमें कोई बुराई थी सब नसीब का खेल था बस किस्मत में जुदाई थी. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जीतन. अरे जब हम आपके साथ हैं तो जुदाई की बात क्यों. लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज और आई डू होप दैट लाइफ में कभी जुदाई जुदाई ये ना आए और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो लोड्स ऑफ लव पहुंचाएंगे आप तक विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti,
0: feel the Musti.
3: शाम के ठीक चार बज रहे हैं।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है। संध्या नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है सबका। शकील मोहम्मद ने घोषणा की है कि नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के भीतर सिंडी प्रणाली को संभालने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा। ये घोषणा उन्होंने आज दोपहर इबन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के सिंडिक सिस्टम में किए जा रहे इस सुधार से अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, ऐसा मंत्री ने कहा है। इस सुधार को लेकर निवासियों के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है ताकि उन्हें नई व्यवस्था की जानकारी दी जा सके। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वर्षों के दौरान कृषि भूमि की उर्वरकता प्रभावित हुई है। सरकार अब जैविक पदार्थ, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार की गई रणनीतिक योजना में कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजी को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। फ्लाक में स्थित फागे का मॉडल फॉर्म 100% जैविक कृषि पद्धतियों का एक ठोस उदाहरण है, जिन्हें अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मॉडल फॉर्म नवाचारी पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों का उपयोग करता है, जो मिट्टी को एक मूल्यवान संसाधन में बदलकर स्वस्थ सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करती है। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाऊ विकास की गारंटी माना जाता है, जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोसिक्रो इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत अब केवल 2 दिन दूर है। इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप टूर्नामेंट, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी, 104 से अधिक मैच खेले जाएंगे। तो याद रखिए, गुरुवार 11 जून को शुरू होगा ये विश्व मुकाबला। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रशंसक पहले से ही इस माहौल में डूब चुके हैं और इस बड़े खेल उत्सव का पूरा आनंद लेने की तैयारी भी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैल रही इबोला महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी है। यूरोपीय संघ ने परीक्षण, निगरानी और मरीजों के उपचार को मजबूत करने के लिए 5 मिलियन यूरो से अधिक की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक 550 मामलों की पुष्टि हुई है और 101 मौतें दर्ज की गई हैं। ये प्रकोप इबोला वायरस के बुगियो स्ट्रेन के कारण फैला है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र इतुरी प्रांत है, जहां कुल मामलों का 94% दर्ज किया गया है। हालांकि सुरक्षा स्थिति राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है, क्योंकि इतुरी में सशस्त्र समूहों की मौजूदगी के कारण स्वास्थ्य टीमों की पहुंच सीमित हो गई है। ये महामारी पड़ोसी युगांडा तक भी फैल चुकी है, जहां 19 पुष्ट मामले और 2 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अभी तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसार का कोई सबूत नहीं मिला है। कंपाला की यात्रा के दौरान WHO के महानिदेशक ने युगांडा की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की, लेकिन साथ ही उन्होंने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा बंद रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे एक शुभ समाचार।

0: नंबर 60 कैलडरन रोड रेटन स्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में. नंबर 60 कैलडरन रोड रेटन स्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 73 साल के 73 इयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जिन्हें रॉय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहली टैगोर रोड फोंजसा के रहने वाली थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सबिता रुचाया के घर ईस्ट लंदन इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM इन इंग्लैंड. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: रफ्तार वाइब फिल्मी राइट्स
3: RM2 रेडियो मस्ती.

0: गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते, कैसे हैं आप। ट्यूसडे की शाम धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर रफ्तार वाइब्स। इट्स योर रफ्तार वाइब्स रिया के साथ। और खड़ी अब ही हमारी कह रही कि इट्स 4:13। कुछ लोग ऑफिस से घर की तरफ निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी अपने डेस्क पर काम में लगे हैं और कुछ दोस्तों की नाइट शिफ्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। रोड्स पर आई एम श्योर कि ट्रैफिक का सिलसिला तेज हो रहा है। बसेस, कार्स और बाइक्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और इस सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं जबरदस्त एनर्जी, मूड को और भी परफेक्ट बनाने वाली गानी, और वो गानी जो थकान को साइड में रखकर चेहरे पर मुस्कान ले आए। आज के रफ्तार वाइब की शुरुआत हुई है कि सिरा सिरा के साथ और अगले पूरे घंटे हम बजाने वाले हैं लाइफ से भरे अब बीट और पॉजिटिव गाने। तो चाहे आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे हो, ऑफिस में हो या घर की तरफ सफर कर रहे हो, वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा ही दीजिए और शाम को बना दीजिए और भी खूबसूरत। इट्स मी रिया के साथ। आपकी डेडिकेशन से आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: 4:20 एंड let me tell you that अगर आप किसी खास इंसान के लिए परफेक्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो मिस्टिक वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे खूबसूरत ऑप्शंस, एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टनिंग होम डेकोर आइटम्स सब भी है। सब कुछ एक ही जगह पर है, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या किसी को बस एक प्यारा सा सरप्राइज देना हो, तो मिस्टिक वर्ल्ड में आपको मिल सकता है वो सारी खास तोहफे जो दिल को छू जाए। और यहाँ पर मजेदार बात ये है कि मिस्टिक वर्ल्ड एंड एमबीसी लेकर आया है आपके लिए एक गेम। सो सवाल हम आपसे पूछेंगे, बॉलीवुड क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, बहुत ही आसान। फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे में राज और सिमरन की पहली मुलाकात किस देश में हुई थी? फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे में राज और सिमरन की पहली मुलाकात किस देश में हुई थी? तो चलिए अपना सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ आप हम तक पहुँचाइए 5499-1294। और आप अगर सही जवाब देते हैं तो आपको मिल सकता है 500 rupees का गिफ्ट वाउचर। So, सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ on 5499-1294। Good luck आप सभी को।
1: Radio Musti
2: Hit Music Only
1: Feels a Musti Radio Musti.

0: ऑल राइट इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा।
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

सेज जवाब है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज और सिमरन की पहली मुलाकात किस देश में हुई थी, एंड सही जवाब है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब मिले हमें, लेकिन एज यू नो हमें एक ही विनर चाहिए और लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गई है हमारी लकी विनर। सो बिग कंग्रेचुलेशन गोज आउट टू पूरन जया। आपने दिया है सही जवाब और इसी के साथ आपको मिल रहा है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर और ये आप तक बाय पोस्ट पहुंचेगा। सो लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट अगर आप एक परफेक्ट गिफ्ट आइडिया ढूंढ रहे हैं तो mysticworld.mu यहाँ पर ही है, आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन एंड वहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हैं उनकी एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टनिंग होम डेकोर भी अवेलेबल है वहाँ पर। mysticworld.mu has exactly what you're looking for। तो जाइए देखिए वहाँ पर कि आपको क्या कुछ मिल सकता है। आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आज या ऑल्सो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं 5880 7652 5880 7652। एंड वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशन सर जया, आप जीत चुकी है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर। लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट ये आप तक पोस्ट विया पोस्ट पहुंचेगा। एंड जो लोग नहीं जीत पाए आप दिल छोटा ना करें क्योंकि बारी आपकी भी जरूर आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बारी तो जरूर आएगी। सो आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए क्योंकि गेम्स पे गेम्स तो हम लेकर ही आते हैं आपके नाम। स्टे ट्यून्ड और गाने आप एंजॉय करते रहिए। रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स, आरएम2 रेडियो।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा।

और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। RM2 Radio Masti।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Traffic update. Traffic update.
3: चलिए अभी हमारी बात हुई है सेयर जी से और नज़र डालते हैं अभी हम ट्रैफिक की सिचुएशन पर। फिलहाल किसी बड़े एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यूजुअल रश आवर ट्रैफिक रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर आप पोर्ट लुइस से मोटरवे M1 की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक काफ़ी स्लो मूविंग है। कैपिटल से डोव की तरफ जाने वाली ड्राइवर्स को भी हैवी स्लो डाउन का सामना करना पड़ रहा है। पाई से बगातेल फिर रेजुई त्रिबिका और फिनिक्स के आसपास भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर ही निकलिएगा। ओशबा कागोरिया साथ ही जिनफे से त्यागूश तक ट्रैफिक स्लो है और व्हीकल्स बम्पर टू बम्पर मूव कर रहे हैं। ओफ की तरफ कालबास बुपलां और राउंड अबाउट मापू में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन देखने को मिल रहा है। अगर मुमकिन हो तो अल्टरनेटिव रूट्स पर नज़र आप रखिए। एक अच्छी खबर है कि मोटो वे M3 अभी रिलेटिवली एक्सेसिबल है और ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। एंड अगर आप बेल विलेज से रोजल की तरफ सफ़र कर रहे हैं तो वो स्लो डाउन देखने को मिलेगा, खासकर बेल विलेज एरिया में। सो ड्राइव सेफली, सेफ डिस्टेंस बनाए रखिए और रेडियो मस्ती के साथ अपने सफर को बनाए रखिए एंजॉयबल। चलिए अभी हम चलते हैं डायरेक्टली स्पोर्ट्स की खबरों की ओर।
4: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
0: Sports news, latest updates.
5: Sports news.
6: Radio Musti in the mix.
3: चलिए सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। वी हैव अरविंद इन द स्टूडियो। हेलो, गुड आफ्टरनून आपको अरविंद।
7: गुड आफ्टरनून आपको, गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। आजकल सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप 2026, और आज काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन किया टू टेक सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द MBC ऐप, जिसमें आप लोग उसको अपलोड करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जब आप ओके करेंगे तब सब कुछ ओके होगा। यू विल बी एबल टू ऑल द 104 मैचेस, सब मैच आप देख सकेंगे। और जिसे हम कुछ दिन से बताते आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग ये है कि आप अगर इसको डाउनलोड करते हैं तो चाहे वो आप लैपटॉप में हो, चाहे वो एंड्रॉयड टीवी में हो या फिर मोबाइल फ़ोन में हो, कहीं पर भी ये मैच देख पाएंगे। और ख़ास तौर पर जब ये मैच सुबह अर्ली सुबह खेला जा रहा है तो आप कहीं पर भी ये मैच देख सकेंगे। सो अभी कुछ फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं इन दिनों। आज सबसे पहले वीमेंस यूरोपियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के काफ़ी मैच हैं, ये तो हैं ही। फिर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में आज सुबह स्पेन ने पेरू को 3-1 से हराया। इसमें मिकेल ओयारज़ाबाल का एक गोल, फिर पेड्री का एक गोल और एक ऑन गोल रहा। पेरू का गोल वेलेस ने स्कोर किया। सो गुड गोइंग फॉर ला रोरा, 3-1 से जीत। अभी मैच चल रहा है चाइना और थाईलैंड के बीच, बाकी मैच भी आज खेले जाएंगे, जैसे फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया त्रिनिदाद, हंगेरी अगेंस्ट कजाकिस्तान, ये सभी मैच आज खेले जाएंगे। कल सुबह आप इन सभी मैचों के नतीजे सुन पाएंगे। और कल भी फ्रेंडली मैच रखे गए हैं जिनमें सऊदी अरेबिया का मुकाबला सेनेगल से होगा। अर्जेंटीना, ये वैसे कल सुबह तुर्की खेला जाएगा, सऊदी अरब सेनेगल, अर्जेंटीना आइसलैंड, इराक वेनेजुएला, पोर्टुगल नाइजीरिया, इंग्लैंड कोस्टारिका, ये पांच मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हैं, खासतौर पर इंग्लैंड के लिए जो जिसका आखिरी मैच होगा बिफोर द वर्ल्ड कप। पोर्टुगल के लिए भी अंतिम तैयारी, अर्जेंटीना के लिए भी। और इस

0: में काफ़ी फ्रेंडलीज में काफ़ी खिलाड़ी घायल भी हो रहे हैं, इसलिए इनको ध्यान से रखा जा रहा है। काफ़ी मैच ड्रॉ भी जा रहे हैं। और वैसे वर्ल्ड कप पर ज़्यादा जानकारियां अभी थोड़ी देर बाद आपको देंगे। इन द स्पेशल वर्ल्ड कप क्या कुछ हो रहा है। ओलिजे जो कल हैट्रिक स्कोर कर पाया, फ्रांस का खिलाड़ी, लगता है कि वो अब बालों दो पिक्चर में आने लगा है। अपने कप्तान हैरी केन की तरह, यानी बायर्न म्यूनिख में हैरी केन की तरह वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया था और अभी फ्रांस के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और वर्ल्ड कप में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो वो उस्माना देम्बेले के पास भी आ सकता है। इधर वुल्व्स खिलाड़ियों को साइन करने लगा है। वुल्व्स ने थ्रीपीए को साइन किया और यिमेनेज को साइन करने के चक्कर में है। वुल्व्स जो रिलीगेट हो चुके हैं फिर भी अगले सीजन की तैयारी कर रही है। क्रिकेट, आज इंडिया ए के लिए वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू रही लेकिन खास कुछ खास नहीं कर पाया। भले ही इंडिया ए ये मैच जीत गया 8 रनों से, पर इसमें सूर्यवंशी केवल 14 रन बना पाया, 14 रन्स और 12 गेंदों में 3 चौकों के साथ। टॉप स्कोर किया इसमें ऋतुराज गायकवाड ने 101, तिलक वर्मा 60, और तो इंडिया की टीम 8 रनों से ये मैच जीत लेती है। इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की डेब्यू रही विद द इंडियन शर्ट। बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड कप में, समय समय पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अभी के लिए थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप।
1: थैंक यू सो मच अरविन,
0: वेलकम।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Ricassez-le la voie. La lumière moderne, prix choc.

0: की देखो।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.
4: Get ready for the biggest World Cup ever.
3: 2026 FIFA World Cup.
4: पहली बार होगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
4: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
3: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
5: चलो वर्ल्ड कप की ओर, मंजिल एकदम सामने है। आज 9 जून, परसों 11 जून फुटबॉल का सबसे महान टूर्नामेंट शुरू होगी। मेक्सिको, कनाडा और यूएसए तैयार हैं। जोगो जोता होता तो वर्ल्ड कप में खेलता। फीफा के लेटर्स दैट यूनाइट पहल पर जोगो जोता की पत्नी रूट कार्डोज़ो ने एंडी रॉबर्टसन को एक इमोशनल लेटर भेजा। जोगो जोता और रॉबर्टसन हमेशा कहते रहे कि वर्ल्ड कप में खेलना उनका सपना है। जब स्कॉटलैंड क्वालिफाई हुआ तब उसने जोता को याद किया था। एंडी रॉबर्टसन के साथ जोता भी वर्ल्ड कप में है, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। थैंक यू फॉर टेकिंग जोगो जोता विद यू। 6 वर्ल्ड कप में खेलना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। लुका मोड्रिच, मैनुअल न्यूयर और यूटो नागातामो, इनके लिए 5th पार्टिसिपेशन। नेदरलैंड्स के डिफेंडर जूरियन टिम्बर के लिए हार्ट ब्रेक, इंजुरी के कारण उसे स्क्वाड छोड़ना पड़ रहा है। और सोमाली का रेफरी ओमा आर्टन भी नहीं जा पाएगा, उसे वीजा नहीं दिया गया। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसे एंट्री नहीं मिली क्योंकि सोमालिया यूएस के ट्रैवल बैन लिस्ट में है। बैड लक इस रेफरी के लिए। और वैसे वर्ल्ड कप में जाने के लिए वीजा को लेकर काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत फैंस वहां नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप जाएंगे जरूर क्योंकि एमबीसी के साथ आप लोग मैच देखेंगे और एमबीसी रेडियो के साथ ऑल द न्यूज, व्यूज एंड रिव्यूज आपको देते रहेंगे वर्ल्ड कप स्पेशल में। सो गेट रेडी, वर्ल्ड कप नॉकिंग एट द डोर और 2 दिन एंड विल बी इन मिक्स।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM2 Radio Masti।

वेलकम बैक एक बार फिर आप सभी को नमस्ते. कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक. और अभी हमारी घड़ी कह रही है कि इट्स 5:08 और रफ्तार वाइब्स का दूसरा घंटा शुरू हो चुका है. रोड्स पर ट्रैफिक की रफ्तार अभी भी लगभग वैसे ही है. गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, सिग्नल्स पर इंतज़ार है कि हर कोई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है. जी हाँ, पताक में है कि अब हम घर कब पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे. वैसे इस घंटे हम मूड को थोड़ा सा बदलने वाले हैं. एनर्जी तो रहेगी, लेकिन अब उसमें घुलने वाली है थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा सुकून और बहुत सारे रोमांटिक का एहसास. अगर आप अपने किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं या बस शाम को दिल से महसूस करना चाहते हैं, तो ये घंटा आपके नाम है. ब्यूटिफुल रोमांटिक मेलोडीज, प्यारे लव्स और वो गाने जो दिल को छू जाते हैं. सो ट्रैफिक को थोड़ा आप भूल जाइए और प्यार भरे सुरों के साथ रफ्तार वाइब्स का मजा लीजिए सिर्फ रेडियो मस्ती पर. दिस इज मी, आपकी रिया आपके साथ. एंड वी आर हियर विद द ब्यूटिफुल सॉन्ग जो कि हम डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट, यानी कि हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कब से और कब से रेडियो सुन रहे हैं, तो कुछ स्पेशल आपके नाम.

कभी कभी एक गाना किसी इंसान की याद बन जाता है। जैसे ही वो धुन सुनाई देती है तो कुछ चेहरे, कुछ बातें और कुछ लम्हे आंखों के सामने आ जाते हैं। शाम का ये समय भी कुछ ऐसा ही होता है। दिन भर की भाग दौड़ है के बाद दिल थोड़ा हल्का होना चाहता है और रोमांटिक गाने उसे एहसास को और भी खूबसूरत बना देते हैं। आज अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो शायद अगला गाना आपके दिल की बात कह दे।

Well, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शायद आप घर भी पहुंच चुके हैं। बाहर आसमान पर नारंगी रंग बिखरा हुआ है, हवा भी कुछ ठंडी सी महसूस हो रही है। अपना डेडलाइंस के बाद ना ट्रैफिक के बाद वेल कहीं पर ट्रैफिक है शायद, बट अभी हम ट्रैफिक की बात नहीं करेंगे। अभी तो हम घर पहुंचने के बाद क्या करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। वेल, कुछ लोग आराम करते हैं चाय का एक प्याला परिवार के साथ और रेडियो मस्ती के प्यारे गाने। इस समय बस एक ही काम कीजिए, स्ट्रेस को थोड़ा आप साइड में रखिए और दिल को सुकून देने दीजिए। जी हाँ, हम अक्सर कहते हैं दैट जब आप घर पहुंचते हैं ना तो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना बहुत ही अच्छी बात है। एंड हमारा जो फ़ोन है ना, इसे आप साइड में रख दीजिए, साइड में रखिए और बातों में फोकस कीजिए। आज क्या कुछ हुआ, कल क्या प्लान है, बस कुछ ऐसे वैसी बातें बट जो आपको आपस में बांध कर रखता है। सो यस, वी आर हियर विद सम ब्यूटीफुल गाने यहाँ पर ऑन RM2 रेडियो बस। इट्स योर अफ्तार वाइब्स रिया के साथ एंड आई होप आपको गाने पसंद आ रहे हैं। शाम का ये समय है जहाँ पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं घर पहुँच जाते हैं एंड पहुँचते ही आप फटाफट किचन की ओर बढ़ जाते हैं। आज क्या बनाएंगे डिनर में, बट नहीं, आप 10-15 मिनट लीजिए खुद के लिए एंड एक कप चाय आप पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जो भी आपको पसंद है। हाइड्रेट योरसेल्फ। आपको पानी पसंद तो सबको होता है, पानी आपको पानी चाहिए, पानी आप पीजिए, खूब पीजिए और टेक सम टाइम फॉर यू। बस इसमें ही आप खुद को ढूंढ पाएंगे और अगर आप खुद को ढूंढ पाते हैं तब भी तो खुश रह पाते हैं। तो चलिए, आपको खुश रखने के लिए वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल ट्रैक यहाँ पर हमारे सभी लिसनर्स के नाम डेडिकेटेड।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: वेल फैशन का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं होता बल्कि उन्हें सही तरह स्टाइल करना भी होता है। सो आज का फैशन टिप ये है कि अपने आउटफिट में एक स्टेटमेंट पीस आप जरूर ऐड कीजिए, चाहे वो एक एलिगेंट वॉच हो, एक स्टाइलिश हैंडबैग, एक क्लासी बेल्ट या एक सिंपल पीस ऑफ ज्वेलरी। एक अच्छा एक्सेसरी पूरे लुक को इंस्टेंटली एलिवेट कर सकता है। याद रखिए, कभी कभी छोटी सी डिटेल ही सबसे बड़ा इंप्रेशन छोड़ जाती है। सो ये था आज का फैशन टिप, स्पॉन्सर्ड बाय अल्कोवी फैशन, जहां स्टाइल मिलता है कॉन्फिडेंस से।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय अल्कोवी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: अरे मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े वादों में नहीं होती, कभी एक छोटा सा मैसेज, एक मुस्कान या किसी का हाल पूछ लेना भी प्यार का एहसास दे जाता है। इसी तरह गाने भी होते हैं, कुछ गाने शोर नहीं मचाते, बस धीरे से दिल में उतर जाते हैं और वहाँ अपनी जगह बना लेती है। और रफ्तार वाइब्स की इस रोमांटिक आवर में हम सब ये चाहते हैं कि बस खूबसूरत गाने हो यहाँ पर और वही खूबसूरत एहसास लेकर आए हैं जो सफ़र को और भी यादगार बना दे। एंड अभी तो एक ही गाना हम चला पाएंगे, इसके बाद आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन, बट इसके बाद हम फिर से वापस लौट आएंगे विद सम मोर रोमांटिक गाने। तो आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। वेल यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि हम ट्राई करेंगे। वी हैव बदवाग बदेसी जी जो तायक रहते हैं और अनुषा के लिए एक गाना रिक्वेस्ट कर रही है फ्रॉम द मूवी लापता लेडीज, जो हम नेक्स्ट आवर जरूर चलाएंगे क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव डेवरन स्वीटा रविश प्रीशा लोवेशा एंड अपाटी परिवार रोशनवा से है, कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो बारिश हो रही है, तो अगर बारिश हो रही है तो एक सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक बहुत ही जचेगा। एंड हम ये आपके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम डेडिकेट करते हैं। करिश्मा के नाम ऑल्सो नेक्स्ट गाना जाता है। एंड वी ऑल्सो हैव रेबिका जो हमारे साथ कनेक्टेड है, सो रेबिका आपके नाम नेक्स्ट ट्रैक। वी हैव रोशनी जो कैथाबोन से है और ये गाना आप ही ने रिक्वेस्ट किया था, पल पल दिल के पास, आप ही के नाम खास तौर से डेडिकेटेड। तो चलिए गुड इवनिंग टू आशी, हमारे साथ कनेक्टेड है। आशी आपके नाम भी नेक्स्ट गाना, इट्स अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द मूवी तमाशा।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

शुक्रवार 9 जून 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अफ्रीका में इबोला महामारी की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर उठाए जा रही कदमों पर गौर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में आज बेन में एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की बैठक लगी। सावधानी के तौर पर प्रभावित देशों से आने वाले मोर्शनों को अब से 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडीक प्रणाली का संचालन करेगा। इस बात की घोषणा मंत्री शकील मोहम्मद के आज एबेन में प्रेस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के स्तर पर लाए जा रहे सुधार से जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। देश का सबसे बड़ा जलाशय महोबा का करीब 2 लाख परिवारों को पानी पीने का पानी मुहैया करता है, लेकिन इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके पीछे कारणों पर विस्तार इस बुलेटिन में। हमले रोकने के लिए ईरान और इजराइल के बीच बनी सहमति के बाद तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खोला गया। सऊदी

0: अरब से हज यात्रियों के साथ कई उड़ानें तेहरान पहुंची। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अफ्रीका में इबोला महामारी की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर उठाए जा रहे कदमों पर गौर करने के लिए आज बेन में एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की बैठक लगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेजू की अध्यक्षता में लगी इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, पुलिस और निजी सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल रहे। ये बात उल्लेखनीय है कि सावधानी के तौर पर प्रभावित देशों से आने वाले मॉरिशनों को अब से 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी संतना पोंसोनो की रिपोर्ट पर करुणा लालू के विवरण के साथ।
1: रियोबेल रिक्रिएशनल सेंटर को क्वारंटीन केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है और कर्मचारी अंतिम तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं। यदि लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिणी सूडान के नागरिकों के लिए मॉरिशस में प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित है, फिर भी मॉरिशन नागरिकों और इन तीन देशों से आने वाले कुछ खास श्रेणी के यात्रियों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें हवाई अड्डे से सीधे इस केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। डॉक्टर फाजिल कोडाबुकस ने कहा उन्हें एक सैनिटरी कॉरिडोर में भेजा जाएगा। एक सैनिटरी इंस्पेक्टर उन्हें रियोबेल तक पहुंचाएंगे, जहां एक मेडिकल टीम द्वारा उन पर निगरानी रखी जाएगी। डॉक्टर अकमेज मुलाबाकस ने कहा दिन में दो बार तापमान लिया जाएगा। डॉक्टर और जिम्मेदार नर्स सुनिश्चित करेंगे कि यात्री में कोई लक्षण न हो। यदि लक्षण दिखाई दे तो संबद्ध स्पेशलिस्ट को सूचित किया जाएगा, फिर उन्हें चिकित्सा केंद्र तक भेजने का फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में आयोजित एक अंतर मंत्री स्तरीय बैठक में देश को इबोला वायरस से सुरक्षित रखने के लिए लागू विभिन्न प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। खास चिंता का विषय ये है कि फिलहाल इस बीमारी के लिए कोई स्वीकृति का उपलब्ध नहीं। डॉक्टर फाजिल कोडाबुकस ने कहा अभी के लिए कोई टीका नहीं, साझेदारों द्वारा इस वास्ते कड़ी मेहनत की जा रही है। मॉरिशस में इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है। यात्रियों की देखभाल, उपलब्ध दवाओं का भंडार, चिकित्सा कर्मचारियों की तैयारी, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। कई प्रश्न उठाए गए और विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। बंदरगाह और हवाई अड्डे के लिए सुरक्षा उपाय पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। बैठक में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि इसी प्रकार के प्रोटोकॉल होटलों में भी लागू किए जाएं। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इबोला के किसी भी उपचार की अनुमति नहीं होगी। जहां तक महामारी से प्रभावित इन तीन देशों के उन छात्रों का प्रश्न है जो मॉरिशस सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, अधिकारियों द्वारा उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
0: इसी सिलसिले में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप के खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेजी किए जा रहे हैं। पुष्ट मामलों की संख्या 550 और मृतकों की तादाद 101 तक पहुंच गई है। ये बीमारी पड़ोसी देश युगांडा तक भी फैल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से $501 मिलियन की कॉन्टिनेंटल योजना शुरू किए जाने के बाद यूरोपीय संघ की संबंधी सहायता के लिए 5 मिलियन यूरो से ज्यादा की राशि जारी कर रहा है। रजनी बेकर की विवरण पर शेजा जुमन की का रिपोर्ट।
2: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभावित करने वाली महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी है। यूरोपीय संघ ने 5 मिलियन रुपए से अधिक के अतिरिक्त फाइनेंसिंग की घोषणा की। इससे सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में मरीजों पर जांच कार्रवाइयां, निगरानी और उन्हें संभालने संबंधी सत्र बढ़ाए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एबोला के बोंडीबुग्यो वायरस के फैलने से 550 मामलों की पुष्टि हुई है और 101 लोगों की मौत हुई है। इतुरी प्रदेश महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जाता है। यहाँ पर 94% मामले दर्ज। इसके अलावा पड़ोसी युगांडा में भी महामारी फैली हुई है, जहाँ पर 19 मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर भी सैनिटरी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर तक कोई भी सामुदायिक ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कंपाला के दौरे पर गए हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने युगांडा के जवाब की शीघ्रता की सराहना की और इसके साथ

0: बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सरहद के बंद किए जाने पर फिर से विचार करने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम गेब्रियोसिस ने कहा,
1: Ebola needs contact and it's not like COVID. So with basic precautions, many countries can prevent a case from coming or they can manage it as soon as possible.
0: इलाके में दक्षिणी सूडान में चेतावनी बरकरार, वहां पर किसी मामले का संकेत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की ओर से निगरानी बढ़ाई गई है क्योंकि प्रभावित देशों से वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है।
2: नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडिक प्रणाली का संचालन करेगा। इस बात की घोषणा मंत्री शकील मोहम्मद ने आज बैन में प्रेस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के स्तर पर लाए जा रहे सुधार से जवाबदेही, पारदर्शिता, बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस सुधार योजना के बारे में निवासियों को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जलाशय महोबा का करीब 2 लाख परिवारों को पीने का पानी मुहैया करता है, लेकिन इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। ये देखा जा रहा है कि जलाशय हर साल ऐसी कठिनाइयों का सामना करता है, ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हम थोड़ी देर में फिर से वापस आएंगे एक रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए खबरों को आगे बढ़ाती है। एज रेटिंग्स अफ्रीका द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस का पब्लिक फाइनेंस मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उच्च कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं अभी भी बजटीय संभावनाओं पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि एजेंसी ने सार्वजनिक खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के चलते वित्तीय अनुशासन में सुधार दर्ज किया है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
3: एज रेटिंग्स अफ्रीका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त में सकारात्मक प्रगति हुई। एजेंसी ने खास रूप से सार्वजनिक व्यय पर बेहतर नियंत्रण का उल्लेख किया। हालिया आंकड़ों के अनुसार बजट के संबंध में भी सुधार हुआ और कई खर्चों में कमी देखी गई। इस बीच भावी बजट की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले अर्थशास्त्रियों ने इस पर चिंता व्यक्त की कि सार्वजनिक ऋण अब भी ऊंचा है और मार्च 2026 के अंत तक ये देश के सकल घरेलू उत्पाद का 89.5% तक पहुंच गया है। अर्थशास्त्री गिरीश आलगू ने कहा, GDP के करीब 90% कर्ज के साथ जनता की सुरक्षा के लिए सरकारी कदम सीमित हो जाता है। बाहरी झटकों से देश की मजबूती तभी होगी जब कर्ज नियंत्रित होगा। एक और अहम बात, देश की रेटिंग एक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम का आधार उसके कर्ज पर भी निर्भर करता है। अच्छी रेटिंग से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और देश को बेहतर स्थिति में पूंजी प्राप्त होती है अच्छी दर में। यदि कर्ज ज्यादा हो तो रेटिंग भी कम होगी। इसके अलावा मध्य पूर्व में जारी तनाव भी चिंता का विषय है। एजेंसी के CEO के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तो इसका असर मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि पर भी होगा। इससे टैक्स की आय में कमी आ सकती है और सब्सिडी तथा सामाजिक सहायता उपायों से संबंधित सरकारी खर्च बढ़ सकता है। सौरव चटर्जी ने कहा, एक सकारात्मक बात, बजट घाटा कम हो रहा है। GDP के 9.8% से 4.9% तक, लेकिन कर्ज सेवा लागत का भार ज्यादा से ज्यादा पब्लिक फंड पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव और दर के बढ़ने की संभावना के चलते एज रेटिंग्स अफ्रीका ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के दौरान कई ऋण भुगतान की समय सीमाएं पूरी होंगी। इस स्थिति से देश के उधार की लागत बढ़ सकती है, खासकर ब्याज भुगतान को लेकर। एजेंसी का निष्कर्ष है कि यद्यपि बजटीय मोर्चे पर प्रगति दर्ज की गई है, फिर भी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सरकार के वित्तीय गुंजाइश सीमित बनी हुई है।
2: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडिक प्रणाली का संचालन करेगा, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मंत्री शकील मोहम्मद ने आज इबेन में आयोजित एक प्रेस संबोधन के अंतर्गत उन्होंने

0: दी। इस सुधा योजना के बारे में निवासियों को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। कृदित्य जियोफा की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: भवनों का रखरखाव, साझा क्षेत्रों की स्वच्छता, मरम्मत कार्य आदि एनएचडीसी आवासों में सिंडिक की अहम भूमिका होती है, लेकिन वर्षों के दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं जिनमें वित्तीय कुप्रबंधन, निगरानी की कमी और बकाया योगदान शामिल हैं। हर महीने मकान मालिक सिंडिक के साझा कोष में योगदान देते हैं। सरकार भी प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए 200 रुपये का योगदान करती है। जल्द ही एक समर्पित टीम सिंडिक के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
2: avec l'argent que le gouvernement contribuait pour chaque household dans NHDC, il arrive à peu près autour du 40 millions de roupies. 44% de ce que gouvernement peut donner, l'IPAL vert paye salaire ban membre syndic, tandis que 37% seulement pour réparation et qu'entretien. La réforme, c'est créer un compte qui appelle National Syndicate Fund Account à la NHDC. Le ministère pouvait verser un fonds mensuel selon le nombre d'unités. Chaque résidence pourrait avoir son propre dedicated account. La subvention gouvernementale ira directement à la NHDC Limited au lieu qu'il y ait un paiement à un syndic. Un département dédié au sein de la NHDC qui appelle le Housing Estate Management and Community Development.
1: सिंडिक प्रणाली में सुधार के तहत कई आवासीय परिसरों का निरीक्षण किया गया। अनेक मामलों में सिंडिक का न होना, प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव और कई स्थानों पर अवैध निर्माण भी पाए गए।
2: Qu'est-ce qui va changer pour les résidents? Les parties communes seront plus propres. Les aires de jeu seront entretenues et les pompes à eau pour fonctionner. Il n'y aura plus de coupures d'électricité dues à des factures de la CEB impayées. Il y aura des réparations mineures plus rapides via une équipe de la NHDC, de sa département dédié là, qui pourra intervenir plus rapidement. Pour une transparence totale, le chaque roupie qui pour capable tracer dans un système de comptabilité qui pour clair, net et transparent, qui paye aujourd'hui.
1: नई सिंडिक प्रणाली के बारे में मकान मालिकों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट लिमिटेड के नए अपार्टमेंट भी इसी प्रणाली के अंतर्गत लाए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री शकील मोहम्मद ने ये भी घोषणा की कि 8,000 सामाजिक आवासों में से अधिकांश इस वर्ष सौंप दिए जाएंगे।
0: रासायनिक उर्वरक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के साथ साल दर साल जमीन की उर्वरता कम होती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जैविक पदार्थों, खाद और बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग को बढ़ावा देकर मौजूदा प्रवृत्ति में सुधार लाने का विचार कर रही है। एग्रो इकोलॉजी खाद्य सुरक्षा की स्ट्रैटेजी योजना के मुख्य स्तंभों में से एक है। फ्लक्स स्थित फारे का मॉडल फार्म किसानों के बीच प्रोत्साहित की जा रही 100% जैविक खेती के तरीकों का एक ठोस उदाहरण है। इस मॉडल फार्म में नवीनतम और प्राकृतिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे जमीन ज्यादा उपजाऊ बनती है और रासायनिक पदार्थों से रहित स्वस्थ सब्जियां पैदा की जा रही है। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
3: सूर्या और सत्या भाइयों का फ्लक स्थित फागे के मॉडल फार्म में दौरा। मकसद स्पष्ट है, वे पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से खेती कर रहे हैं। पारंपरिक तरीका नहीं बल्कि बायो का इस्तेमाल। पहले चरण के अंतर्गत कंपोस्ट के बारे में बताया गया, यही है स्वच्छ और नियमित उत्पादन की कुंजी।
4: एंजिमुन पकाफे बियो सों के लिए ना पेफे कंपोस्ट।
3: आगे की बायो ट्रेनिंग यूनिट के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर वीना धर्म सिंह दोहारू ने कहा, कोई व्यक्ति कंपोस्ट के बिना बायो नहीं कर सकता है। एक संतुलित भोजन जरूरी है, इसलिए सूखे पत्तों के साथ हरी चीजें भी मिलानी चाहिए। सब मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया जाएगा और खेती में इसका इस्तेमाल। एक अन्य अहम चरण जमीन की उपजाऊता मजबूत करने और खतरों को सीमित करने के लिए पैदावार को डायवर्सिफाई।

0: करना। जब मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो जमीन पर दबाव बढ़ जाता है। तकरीबन एक ही प्रकार का खाद डालना चाहिए। पौधे में मिश्रित सब्जियां भी लगानी चाहिए। हर एक पौधे की अपनी अहमियत है। खोड़ नहीं है बल्कि स्वाभाविक रूप से ये आते हैं। जमीन को नम और उपजाऊ बनाए रखने के लिए जमीन को तैयार करने की भी जरूरत होती है। सूखे पट्टे डाले जाते हैं। सूर्या और सत्या इससे भली भांति परिचित है।
1: Bina mesin, bina jitu. Mais nous pas tu connais bien plante petit vert, bien plante citronnelle. Nous pouvons en prendre, nous pouvons qui bien mettez pour empêcher moustiques entrer.
2: Enfin, nous on a une trois on prend la terre voilà, mais nous devons faire légumes là-dedans. D'ailleurs, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de demandes. Je ne peux dire mais qui fait ça va faire bio. On va vous faire lire un seul coup, nous faire lire étape par étape.
0: एक ऐसा फार्म जहां पर कीड़े आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह फार्म अपनी प्रतिरक्षा खुद करता है। कई पौधे जैसे तुलसी अभयवाद जो हानिकारक कीड़ों से बचाव करते हैं और जैव विविधता भी मजबूत होती है। सौर्य प्रणाली से संचालित सेंसर भी हैं जिसके माध्यम से समझदारी के साथ अमूल्य संसाधन जल का प्रयोग किया जाता है। फाके के रिसर्च साइंटिस्ट राम वेंकटा स्वामी ने कहा, सोलर पैनल से सौर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे सोलर पंप सक्रिय होता है जो बूंद बूंद सिंचाई में लाभदायक है। साथ ही मेट्रोलॉजिक स्टेशन का भी इस्तेमाल होता है जो इस मॉडल फार्म में है। मौसम संबंधी जानकारियों के आधार पर ही हिसाब करते हैं कि कितना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई से जमीन का भी रखरखाव हो जाता है क्योंकि पानी सीधा जड़ में ही जाता है। 2019 से ये फार्म पूरी तरह से बायो का ही इस्तेमाल कर रहा है। फ्लक के मॉडल फार्म की ओर से अन्य कृषकों को जागरूक कराने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। पेस्टिसाइड रेगुलेटरी ऑफिस की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन फलों एवं सब्जियों का मूल्यांकन किया गया है इनमें से एक पंचमांश नॉन कंप्लायंट है। इस तरह कृषि एवं पर्यावरण कृषि उद्योग मंत्रालय की स्ट्रेटेजिक प्लान का एक स्तंभ बना हुआ है। हरित ऊर्जा के लिए इंजन चालू और अब इन सब में हम ही को फायदा होगा। स्वच्छ खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होंगे।
3: कुछ ही महीनों में दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोत ने आज लातुकेनिक स्थित एनटीसी के डिपो का दौरा किया। उन्होंने परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के साथ उन्होंने पिछले जनवरी महीने के अपने दौरे के बाद मॉरिशस में इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग मूल ढांचों की स्थापना के सिलसिले में मॉरिशस में हुए विकास का जायजा लिया। असल में सेशल्स परिवहन क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभव से फायदा उठाने की इच्छा रखता है। नेत्रहीन लोगों के लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, शिक्षा की आयु सीमा में वृद्धि और अनुकूलित उपकरणों की सुविधा, उनके लिए निर्धारित शिक्षा प्रणाली में अपनाई जा रही सुधार योजना में इन मुद्दों पर खास बल दिया जा रहा है। लुईस लाशेस ट्रस्ट फंड ने सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव पेश किए। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
4: लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड बोबासे में प्राथमिक स्तर के 17 और फिर प्राइमरी के 3 बच्चों को प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार यहां 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात निर्धारित है।
5: L'apprentissage, lui, repose au, certainement au bas des autres sens, comme le toucher, lui, des fois, l'odorat. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'aspects qui, comme si, comme si on a l'image, nous avons besoin d'adapter, les mettre en relief, soit mettre en tactile, et surtout mathématiques aussi, si je peux faire un calcul, si je tiens un bon outil adapté, qui, obviously, quand nous pouvons faire un calcul, nous pouvons trouver qui chiffre nous peut écrire, ben, on peut prendre beaucoup plus de temps pour faire un calcul.
4: इस वर्ष 2 विद्यार्थी पिसाक परीक्षा में भाग लेंगे। लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य करता है। स्कूली पुस्तकों का ब्रेल डीपी में अनुवाद किया जाता है और हर वर्ष इस कक्ष से लगभग 2000 प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं।
5: Définir, adapter ce texte qui n'a pas adapté. Voilà, moi, d'après ça.

0: Mais par contre, ben, livre collège, ça m'a livre là, il n'est pas adapté. À ce moment-là, la nuit, besoin c'est adapté ben livre là.
1: हालांकि पिछले 5 वर्षों से कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसमें देरी हो रही है।
2: Par exemple, si nous avons un mini supermarché, que les enfants-là les connaissent, ils n'ont pas fait un achat. Alors, comment ils font ce achat? Ces enfants-là, Enzo, ils ont besoin de faire une transaction financière, ils ont besoin de la banque. À ce moment-là, ils connaissent comment ils peuvent faire quand il y a la banque qui est là pour les faire.
1: माध्यमिक शिक्षा में सीखने की आयु सीमा बढ़ाना, उपयुक्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों का विकेंद्रीकरण करना, ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो सरकार को प्रस्तुत किए गए।
3: पुली रेट्रोब्ली मेम दान दान नुवो लैटमोस्फेयर लिपेडी फैसिलमेंट एन ऑफ डेज़ एंड क्वाल लिपेडी एन ऑफ डेज़ एंड बे डेवन सा एड लिमिट ला विनेन ऑब्स्टैकल विनेन प्रॉब्लम कि कोमा डिगेन सो बातें बिज़ा आरेटे बे मैं वो पेंसे लो मिनिस्टर दे एजुकेशन बिज़ा ना बन डेरोगेशन पुर बन एन्फान सुर सोन हैंडीकैप ली बिज़ा कैपेबल परमिट ली टर्मिन सो एटूड
1: 43 वर्षों के अस्तित्व के बाद लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड शिक्षण पद्धति में सुधार और पुनर्संरचना की मांग कर रहा है ताकि ये संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुरूप एक उपयुक्त समावेशी शैक्षिक वातावरण में संचालित हो सके।
4: फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये खबर, 2026 विश्व कप के शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। 11 जून से 19 जुलाई के बीच सभी की निगाहें कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका पर टिकी होंगी जो इस ऐतिहासिक संस्करण की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस में भी प्रशंसकों में काफ़ी उत्साह है और फुटबॉल की इस विश्व उत्सव का पूरा आनंद लेने के लिए तैयार है। हमारी एक टीम ने कुछ मॉरिशनों की प्रतिक्रिया ली। प्रियंका हरी की रिपोर्ट पर एक बार फिर करुणा लालू का विवरण।
1: फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन में अब केवल 2 दिन बाकी हैं। दुनिया के चारों कोनों में उत्साह चरम पर है और मॉरिशस भी इस फुटबॉल बुखार से अछूता नहीं। कुछ लोगों के लिए ये विश्व कप के उस अनोखे और रोमांचक माहौल को फिर से महसूस करने का अवसर है जिसका इंतजार वे वर्षों से करते हैं।
5: मेरी टीम प्रेफरे से ब्राजील नु गए सा टू ले 4 ans. Nous voulons vivre, moi encore là, moi j'ai 75 ans, moi qu'à vivre encore.
6: Nous ne pouvons pas nous mettre un t-shirt, nous mettre un oriflamme, mais nous espérons qu'on ait une bonne Coupe du Monde, ça me passe tranquille.
7: L'Espagne est mon équipe préférée, alors je vais tout bien match d'Espagne. Ben, il reste ça, c'est mon occasion, capable de gagner.
8: Dans les 66 Coupes du Monde, l'Angleterre s'est gagnée. Là, je suis venu, malheureusement, l'Angleterre n'a pas gagné moins de fans en Angleterre. Et là, nous attendons la Coupe du Monde, là, pour qu'on espère que l'Angleterre a fait une beau face.
9: C'est là, nous pouvons parler un peu plus bien. Parce que moi tout c'est une compétition, ben un peu plaisir ça l'année là. Tu vas pas rêver qu'on va une compétition avant là. Parce qu'il y a beaucoup bon l'équipe une qualifiée.
10: Moi je suppose l'Angleterre pour gagner moi.
11: Mais quand pour gagner.
10: Mais d'imbécile.
11: À ce moment-là qui place qu'ils ont préféré pour grand.
10: Capa va vite nous venir gâter.
1: दूसरों के लिए ये अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी फुटबॉल प्रेम की भावना साझा करने का अवसर है और मैचों की धड़कन और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों के शानदार प्रदर्शन इस उत्सव को और खास बना देते हैं।
12: Ben personne qui peut venir pour perdre là, tout peut venir pour gagner. Ben nous suivons ça loin mais c'est moi mon madame et mon garçon, on a c'est nous suivons un petit peu, c'est qui toi là pour pas quitter. Mais c'est moi tiens un petit peu bonheur, parce qu'à mon ciel là, on est capable de suivre.
13: Nous préparons nos gadjacs, nous mettons nous bien à l'aise, cousin, ma tante, tonton, et là nous gagnons nos Coupe du Monde comme à besoin.
14: La Coupe du Monde, comme d'habitude, pareil, entre famille, où nous meilleure l'équipe au monde, c'est le Brésil. Mais voilà, nous supportons le Brésil à fond.
1: इंतजार अब लगभग समाप्त हो चुका है। केवल 48 घंटे बाद पूरी दुनिया फुटबॉल की धुन पर झूम उठेगी और मॉरिशन भी इस महान खेल महोत्सव के हर पल का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।
4: अफ्रीकी पाक कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन 13 और 14 जून को मैडागास्कर की राजधानी अंतरानारिवो में किया जाएगा। इंटरनेशनल केटरिंग कप 2027 के लिए होने वाली इस पहली अफ्रीकी चयन प्रतियोगिता में मॉरिशस, मैडागास्कर, कुजीवो और गाबो की टीमें हिस्सा लेंगी, यानी कि आइवरी कोस्ट और गैबन की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिताओं को कई चुनौती प्रतियोगियों को कई चुनौतियों का सामना

0: करना होगा, जिनके जरिए उनकी रचनात्मकता, खाना बनाने की कला और अफ्रीकी स्थानीय उत्पादों के बेहतर उपयोग को परखा जाएगा। प्रतियोगिता के अंत में केवल दो देशों को जनवरी 2027 में होने वाले विश्व फाइनल में जगह बनाने का मौका मिलेगा।
1: प्रस्थान से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात मॉरिशस की टीम से हुई। किचन में अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं। तकनीकी अभ्यास, व्यंजनों की आकर्षक प्रस्तुति और टीमवर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी पहलू में कोई कमी न रह जाए। टीम के कोच ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा निर्धारित नियमों और चयनित मेन्यू के कड़े मापदंडों को ध्यान में रखते हुए टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। टीम के कप्तान प्रवीण चतुरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। उनका कहना है कि तनाव और थकान के बावजूद वे व्यंजनों को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं।
2: Pour qu'ils nous présentent un menu avec quatre fruits de mer comme si intégrés, entrée chaud et froid, présentés sur la même assiette. Comme plat principal, c'est le zébu Wellington qui est imposé et une sauce albufera qui nous pour préparer, qui est aussi imposée pour accompagner main course.
1: वही सहकप्तान जूलियो राबो के लिए इस स्तर की ये पहली प्रतियोगिता एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। उनका मानना है कि इस मुकाबले में हर मिनट और हर छोटा विवरण निर्णायक साबित हो सकता है। मॉरिशस की टीम का एक ही लक्ष्य स्पष्ट है, शीर्ष दो देशों में स्थान बनाकर विश्व गैस्ट्रोनॉमी कप 2027 में अपना स्थान बनाना।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमले रोकने के लिए ईरान और इसराइल के बीच बनी सहमति के बाद तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खोला गया। सऊदी अरब से हज यात्रियों के साथ कई उड़ानें तेहरान पहुंची। बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर रजनी बेकर के साथ।
3: जो एंटी साइक्लोन था वो धीरे धीरे हमारे इलाके से दूर हटता जा रहा है। पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वो आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रहकर बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से टापू के आधे पूर्वी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटो पर। दोपहर बाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के दक्षिणी इलाके में और सेंट्रल प्लाटो पर। उत्तर पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। रात के दौरान ये हल्के रूप से कमजोर होते जाएंगे। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पूर्व में 2 मीटर 50 की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी लगूनों में आज रात के दौरान धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:41 पर सूर्योदय।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी लुडोविक हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। फोबाक रोड फोजसाक में फोबाक

फोनसक में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती रूपचंद जिन्हें छुटकी चाची के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे शैलेश मुरत के घर फोनसक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 36 अबातवा रोड होशबुआ में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री खेमराज चरितर जिन्हें जानों के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर होशबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भवन एक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 10 AM। गुडचरण लेन मिडलैंड्स में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्मदेव दोमन जिन्हें रांदाबेल के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मोसलमा प्रोविडेंसिया दो प्रोविडेंस कॉच मिलिटेयर में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वर पत्तू जिन्हें सतीश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले पुलिस सर्जेंट मोका CID में थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 उनकी पत्नी श्रीमती तीहा मीनाक्षी पत्तू के घर कौचिमिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौडेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30 AM। मुलजी लेन प्लेनमानियों में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखजन बिसुनी जिन्हें जीत सुफे ताक्सी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विशाल बिसुनी के घर प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। भोगन रोड रिविया जोरोंपा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री कृतानंद भोगन जिन्हें जोके के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर रिविया जोरोंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। कैल्डरन रोड रे टॉनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जिन्हें रोय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले टैगोर रोड फोजिसाक के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती साबिता रुचाया के घर ईस्ट लंदन इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30 PM। रॉय रोड प्रोविडेंस कॉच मिलिटेयर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मालिया में पालियाची मुनियन पैदाश नाम सीनातोंबी और जिन्हें मनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके नाती मुदाली बेन पाजानी के घर कौचिमिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रामचंद रोड रिपाई में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमावती रमन जिन्हें मौती के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर रिपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोंसा सैप एक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। बियानिका लेन नंबर दो ग्लेन पार्क वाकवा में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा बाई बाहू पैदाशाम लक्सिमो जिन्हें मानती के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर ग्लेन पार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री जय परगासस रामसरन जिन्हें जगदीश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शांति बाई रामसरन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। सोलफेरिनो नंबर पाँच वाकुआ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मरोध देवी जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे विशाल
उनकी बेटी कुशाल देवी के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो था पॉस 10 AM।

0: चंद्रलेन लाहौजा में, चंद्रलेन लाहौजा में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड के श्री रामास्वामी यमना रेड्डी अपादू, श्री रामास्वामी यमना रेड्डी अपादू जिन्हें नारायण के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी दिन के एक बजे उनके बेटे दमा रेड्डी अपादू के घर लाहौजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदाल बेग शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. RM2, Radio Mustang.

नमस्ते सभी को एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर रफ्तार वाइब्स। शाम खूबसूरत हो चुकी है, दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे

पीछे छूट रही है। ऑट ऑफ दार वाइब्स का तीसरा घंटा शुरू हो रहा है। अब इस घंटे में न ज्यादा रफ्तार होगी, न ज्यादा शोर, बस सुकून, प्यार और दिल को छू जाने वाली गाली। और शुरुआत करते हैं अभी इस आवर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्थडे मैसेज के साथ। जी हाँ, जय जन्मदिन है। सो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भविष्य को। हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको भविष्य। आज हमारे कैंटीन के विशाल भाई और रीना भाभी के प्यारे बेटे भविष्य का जन्मदिन है। इस खास दिन पर उन्हें ढेर सारी खुशियां, अच्छी सेहत, सफलता और जीवन में हर कदम पर उन्नति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। ये प्यारा सा मैसेज आ रहा है मामा रीना, पापा विशाल और पूरे बीसी सौ परिवार की तरफ से। भविष्य आपका हर दिन मुस्कान से भरा रहे और आपके सपने हमेशा पूरे होते रहे। रेडियो मस्ती की पूरी टीम की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एंड ये सभी जो लोग डिनर की तैयारी में लगे हुए हैं या जो अपने परिवार के साथ डिनर का आनंद ले रहे हैं, उन सभी को रेडियो मस्ती की तरफ से शुभ आहार। आपकी शाम सुख शांति और अपनों के प्यार से भरी रहे हमेशा। बस हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे और हमारे गाने आप एंजॉय करते रहे। तो बैठ जाइए अभी आप आराम से, दिल को हल्का कीजिए और चलिए इस खूबसूरत शाम को हम बनाते हैं और भी खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत गाने, रोमांटिक ट्रैक्स हम लेकर आए हैं। बट इससे पहले एक बर्थडे सॉन्ग यहाँ पर भविष्य के नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू भविष्य।

शाम का ये समय कुछ खास सा होता है। घर की रोशनियां जल चुकी होती है, रसोई से खुशबू आ रही होती है और दिल को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। दिन चाहे कितना भी व्यस्त रहा हो, शाम हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की असली खुशी अक्सर छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है और उन लम्हों को और भी खूबसूरत बना देते हैं ये प्यारे गाने जो हम चला रहे हैं आप सभी के नाम। वेल, वी गॉट एक और गाना जो हम चलाएंगे, इसके बाद तो हम छुमंतर हो जाएंगे। या ये मेरी बात आपको मिलने वाला है दिव्या का साथ एंड वहाँ पर भी आप बहुत सारे खूबसूरत गाने एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए अभी तो हम आपसे विदा लेंगे, पर जाने से पहले एक दो मैसेजेस यहाँ पर। अनुषा है मोताबा से और आपके नाम हम नेक्स्ट ट्रैक ज़रूर डेडिकेट करके जाएंगे और

एक और अनुषा है यहाँ पर, आप है फॉरेस्ट साइड से और ब्यूटीफुल गाना अपनी कजिन निष्ठा उल्लास जो गिलेंस रहती है उनके नाम डेडिकेट कर रही है। आज उनका बर्थडे है सो उनको हम हैप्पी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं कमिंग फ्रॉम हस्बैंड अमरीश, बेटा अमेश, मामा सुरेखा, पापा सुरेश, पूरे परिवार की ओर से और फ्रेंड पूनम, चाचा अनिल की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। और चलो तो मैं चली है, अभी दिव्या आ गई है नाचते हुए, आपको भी नचाएगी या आपको आपका मनोरंजन जरूर करेगी यहाँ पर। तो चलिए हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
4: RM2
3: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, it's 7 p.m.
3: Evening Lounge.
6: Evening Lounge.
4: RM2.
3: Radio Musti.

कुछ लोग कहते हैं कि अ प्रॉमिस इज मेंट टू बी केप्ट और कुछ लोग कहते हैं कि अ प्रॉमिस इज मेंट टू बी ब्रोकन, लेकिन एक ही दुनिया में दो किस्म के अलग अलग लोग रहते हैं। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये तो ज़रूर हमें जानना ही जानना है। वेल शाम के 7:07 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग जहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 तक इन योर इवनिंग लाउंज। हमेशा की तरह ये मैजिकल लाइन तो हम ज़रूर कहेंगे

0: कि इट्स टाइम टू सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल वंडरफुल रोमांटिक ट्रैक्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जो हम बहुत ही प्यार से चूज करके लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वैसे हमारे गीतों को सुनने के बाद बहुत ही आपको रिलैक्स फील होगा और साथ में आपको थोड़ा और प्यार हो जाएगा। तो चलिए इन खूबसूरत गीतों को सुनने के बाद कुछ खूबसूरत पलों को याद करेंगे, और इन खूबसूरत पलों में से शायद कोई ख़ास हैं जिनको आप याद करना चाहते हैं, तो बेशक ड्रॉप इन योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 पर आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, या फिर लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स आपसे दो तीन प्यार के बोल हम बोलेंगे और साथ में आपके रिक्वेस्ट के गाने भी चलाएंगे, इतना तो जरूर वादा करते हैं। सो आप हमें फोन कर सकते हैं 4028235 402 पर, आपका इंतजार रहेगा।
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वैसे अगर आप ये सवाल बार-बार हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि इस सवाल का जवाब हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है। ये सवाल का जवाब शायद आपके पास है और थोड़ा अपने मन को टटोलने की कोशिश कीजिए, शायद आपको पता चल ही जाएगा कि ये प्यार है या फिर क्या है। 7:13 हो चुके हैं और एक कॉलर हैं हमारे साथ, चलिए उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते गिरीश।
1: नमस्ते भैया जी, कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक, और आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक अभी।
0: चलिए ऑफ एयर आपसे ओके ठीक है। बस बात करते करते आपने वेदर अपडेट भी दे दिया है, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो चलिए गिरीश से हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज भी बस डिनर से पहले गातू खा रही है, थोड़ा सा मंचिंग टाइम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए गिरीश, आज हमें बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी।
0: ओके और चलिए ये गाना आपके लिए हम जरूर डेडिकेट करने की कोशिश करेंगे और
1: आपके लिए भी चला दीजिए।
0: थैंक यू सो मच, दैट्स रियली रियली स्वीट ऑफ यू। एंड गिरीश हमें बताइए कि कल आपका क्या प्लान है, काम पर जाना है, घर पे रहना है?
1: वैसे कल तो मैं अभी घर पर रहने वाला हूँ, कल तो जब काम मिलेंगे तो जरूर जाएंगे।
0: ओके तो ठीक है गिरीश जी, एंड आपको हम विश करेंगे हैव अ ग्रेट लवली इवनिंग अहेड और ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच गिरीश, थैंक यू, बाय। तो चलिए ये थे गिरीश जी, एंड इन्होंने बहुत ही प्यार से एक खूबसूरत सा गाना मांगा है, तो चलिए परदेश का ये गाना हम उनके नाम चलाएंगे।
2: Evening Lounge,
3: Evening Lounge,
4: RM2,
5: Radio Musti.

0: कुछ लोग यही कहते हैं कि प्यार अगर हकीकत में तब्दील हो जाए तो बस क्या ही बात है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें सपनों की दुनिया से बाहर हकीकत की दुनिया में तो आना ही नहीं है। लेकिन कल हम बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से आप प्यार का बसेरा बसर कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सपने में कुछ देखते हैं तो इसको हकीकत में साकार करने के लिए बस मेहनत तो ज़रूरी है ही, चाहे हम काम के बारे में बात करें या फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ में सब लोग तो यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी प्यार की कमी ना हो, और अगर आपको प्यार की कमी महसूस नहीं करनी है तो ऐसे में आपको भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन तो देना ही देना है। इसीलिए थोड़ी बहुत मेहनत आपके साइड से भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। आशनी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती। नेक्स्ट का नाम जाएगा फॉर ब्यूटीफुल मॉम लीना फ्रॉम बोसोंज, शी इज लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती राइट नाउ। इफ यू कुड प्लीज प्ले अ फेवरेट सॉन्ग तिनाकतिन ताना फ्रॉम द मूवी मन। चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाने की कोशिश करेंगे। एंड आप कहते हैं गुड इवनिंग दिव्या जी, होप यू विल प्ले टॉप 90 सॉन्ग्स टुनाइट। एंड आप कहते हैं प्लीज़ प्ले द सॉन्ग हमें क्या खबर थी फ्रॉम द फिल्म कर्तव्य फ्रॉम ज्ञान बिहारी। और आपकी वाइफ है सबीता, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव, सुनील रानी, फ्रेंड वर्दा एंड शीतल के लिए लवली गुड इवनिंग टू यू दिव्या जी। गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो राधा जी ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा एज यूजुअल, लविंग द सॉन्ग सिलेक्शंस एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम हर हर महादेव। आपको भी वैसे आपने गाना मांगा है कहूँ ना प्यार है मूवी से, ये तो हमने ऑलरेडी चला लिया था। अगर आपके लिस्ट में कोई दूसरा गाना है तो ज़रूर हम चलाएंगे। अनिता जी आप अफ्रीकन फ्लैग से साथ देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर बहन शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी के लिए एंड सभी रेडियो मस्ती टीम के नाम जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आपको हम कहेंगे बॉन कुराज स्पेशली टू ऑल दोज वर्किंग नाइट शिफ्ट राइट नाउ।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

बिल्कुल, जिससे आप प्यार करते हैं वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है. माइंड यू, जिंदगी का एक हिस्सा किसी को बनाना और किसी को जिंदगी ही बना लेना, ये दो अलग चीजें हैं. तो चलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हमेशा यू विल फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ. इसीलिए जिंदगी को आप जिंदगी की तरह ही ट्रीट करें. बस लोगों को अगर आप जिंदगी बनाने में लगे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी.

0: बट जिनसे आप प्यार करते हैं बिल्कुल आप उनकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, और साथ में प्यार हमेशा तो वो प्यारा एहसास है जिसको पा लेने के बाद सबको लगता ही है कि प्यार ने सब कुछ अच्छे के लिए ही चेंज कर दिया है। चलिए यहाँ पर अगला गाना स्पेशली हम डेडिकेट करेंगे फॉर अनुषा ऑफ से जेमिल फॉर अ साइड। नेक्स्ट ब्यूटीफुल गाना जाएगा फॉर योर कजिन निष्ठा हुलस हुलास फ्रॉम गुडलैंड। आज उनका बर्थडे है। बेस्ट विशेज फ्रॉम हस्बैंड अमरीश, बेटा है अमीश, मामा सुरेखा, पापा सुरेश, सभी फैमिली एंड आपके पति हैं विमल, आपके स्वीट परी के नाम फ्रेंड हैं पूनम, चाचा अनिल, हसराज, दादी मीला एंड बॉस ऋषि वर्किंग आउट सुपर मार्केट राइट नाउ। उनको हम विश करेंगे हैप्पी हैप्पी ट्यूसडे एंड बॉन वोयेज आपके काम के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर बढ़ेंगे।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
4: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: घर मिलाते चलिए, रात्रि की 8 बज चुके हैं।
7: L'action peut continuer donc au final compétition des bas climat. Bonnes élèves depuis 8 collèges qui finissent sélectionnés, finissent parés pour porter à toute l'opinion le changement climatique. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 13 juin au MBCN et MBCSAT à partir 8h30 à soir.
8: Evening Lounge.
9: RM2
4: Radio Musti.

बिल्कुल, मोहब्बत प्यार इश्क लुटाने की चीज़ ही होती है। वैसे कहते हैं ना कि जितना हो सके आप प्यार को बांटते रहिएगा,

0: क्योंकि प्यार बांटने से प्यार थोड़ा और ज़्यादा होता है और दुख बांटने से थोड़ा और कम हो जाता है. सो जितना हो सके आप खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए और जस्ट एक्सपीरियंस द मैजिक ऑल अराउंड. 8:08 हो चुकी है. इट्स अ वंडरफुल ट्यूसडे इवनिंग. अगर आप हमें मैसेजेस भेजना चाहती हैं तो मैसेजेस भेजने का नंबर है 5499-1294 और फ़ोन करने के लिए 4028-2335. अगर आप रोज़ हमसे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आप थोड़ा दूसरों को भी मौका दें. यस यस, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम न्यू जो हमारे कॉलेज हैं उनसे हम ज़रूर बात करेंगे. तो प्लीज़ प्लीज़ दूसरों को भी मौका दीजिए एंड साथ में आपके मैसेजेस. डोंट फॉरगेट योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज़ 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

0: नजरों से नजरें मिलती हैं तो बस निगाहें टकरा जाती हैं और निगाहों निगाहों में शायद प्यार भी हो जाता है और इस प्यार को बयां करने के लिए बस कुछ खूबसूरत अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी प्यार में अल्फाज कम भी पड़ जाते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आपको हम एंटरटेन करते रहेंगे टिल 9 PM जहाँ पर दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। नमस्ते जी, श्रुति आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे, उनको बहुत सारा प्यार फ्रॉम ममा दिया, पापा आशीष, भाई अमीश, लवीश, खुशी, श्रिया, अरियान, नील की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। गुड इवनिंग दिव्या एंड रेडियो मस्ती टीम, क्रिस्टी आप है रविया देखोल से। नेक्स्ट कहना जाएगा स्पेशली आपके हबीब विक्रम के लिए, आपके ट्विंस हैं कौशिक कौशल के लिए, एंड दे आर योर होल यूनिवर्स एंड आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू दैट कि जब भी आप अपने बच्चों को देखते हैं इट्स लाइक यू वॉच योर हार्ट बीट वॉकिंग अराउंड, और वो इतने प्यारे होते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको पलकों पर बिठा के रखें। उनके लिए हम कितना कुछ सोचते हैं लेकिन आई जस्ट होप कि बस आपके बच्चे एक दिन आपको प्राउड फील कराएं। चलिए यहाँ पर हम अगला गाना खास तौर से डेडिकेट करेंगे फाइनली ज्ञान बिहारी जी के लिए। आपने डेडिकेट किया था गाना हमें क्या खबर थी फ्रॉम द मूवी कर्तव्य, तो चलिए ज्ञान बिहारी जी द नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू वाइफ सबीता और आपकी सिस्टर इन लॉ हैं गीता, संजीव, सुनील, रानी, फ्रेंड वर्दा एंड शीतल के नाम।
1: Evening Lounge,
2: RM2
1: Radio Musti

वेल वेल जिंदगी में चलते चलते बहुत कुछ पीछे छूट जाती है और कहते हैं कि दुनिया गोल है और एक टाइम ऐसा आता है जो आपने खोया था वो फिर से लौट के आता है लेकिन इस बार ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज़ को आपको फिर से एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है इसीलिए शायद कुछ लोग आते हैं एज अ लेसन और कुछ लोग आते हैं एज अ ब्लेसिंग अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को काव करना चाहते हैं एवरीथिंग इज अ डिसीजन ये गाना goes out to each and everyone connected with Radio Masti जहां पर दिव्या का साथ है till 9 p.m.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. चुप के चोरी चोरी प्यार किया नहीं जाता है क्योंकि जब प्यार किया तो डरना क्या. चलिए ये गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर बहन अश्मिका जो आज सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे 27 इयर्स ऑलरेडी. बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मॉम रीटा डैड प्रवीण बहन है अश्विनी और साथ में वी हैव अनु सभी कालीचरण फैमिली ऑफ मोंसेलमॉन सेंट एंड्रे एंड चलिए साथ में यही गाना गुज आउट स्पेशली फॉर योर फ्रेंड रीना पुलवन फ्रॉम हर बेस्टीज लतिका रितिशा दिव्या वी ऑल प्राउड टू हैव हर एज अ पार्ट इन आवर लाइफ. तो चलिए ये गाना खासतौर से आप लोगों के नाम

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM2 Radio Masti. वेल फ्रेंड्स, तन्हा दिल तन्हा सफ़र, ज़िंदगी कभी कभी तन्हा हो जाती है और कभी कभी ये हो कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी अलोन दैन टू बी सराउंडेड बाय दोज पीपल जिनको आप नहीं देखना चाहते हैं या फिर उनके बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके की सराउंडिंग आप रखते हैं उसी तरीके का आपका स्टेट ऑफ माइंड भी हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: नमस्कार दोस्तों, RM2 और ये है लेट नाइट ग्रूव्स। जैसे बॉलीवुड के साले बोलते हैं कि रात जवान है, मौसम मीठी बातों का है और बॉलीवुड के सुर तैयार हैं आपके दिल तक पहुंचने के लिए। मैं आपका दोस्त विकास और अगले 3 घंटे हम साथ लिखेंगे यादों, गीतों और जज्बातों की एक खूबसूरत कहानी।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix. Bhai kuch

0: लोग चाय से फ्रेश होते हैं, कुछ कॉफी से और कुछ सिर्फ अच्छे गानों से। अगर आप भी म्यूजिक लवर्स की टीम में हैं तो ये सफर आपके लिए ही है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम आ गया, म्यूजिक के साथ जुड़ने का टाइम आ गया।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: अच्छा होता ना कि कोई फिल्म है लेकिन एक कोई गाना बहुत पसंद होता है. हर किसी का अपना फेवरेट गाना होता है जो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है. ऐसा गाना जो मूड को एकदम से तरोताजा करता है या फिर आपको सारी टेंशन भुला देता है. तो बस ऐसी कुछ गानों को साथ लेकर मैं जुड़ गया हूँ. अब आपका कौन सा फेवरेट गाना होने वाला है ये तो आपकी चॉइस होगी, लेकिन आपने चूज कर लिया RM2 को. थैंक यू.
3: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: अगर दिन भर की भागा दौड़ी ने आपको थोड़ा थका दिया है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड के सर आपको एक म्यूजिकल वेकेशन पर ले जाने वाले हैं। काश ऐसा होता ना, निकल पड़े एक म्यूजिकल वेकेशन पर जहाँ पर म्यूजिक ही म्यूजिक है, क्योंकि म्यूजिक ना आपके दिल के हाल को सुन लेता है, समझ लेता है। उसके बाद ये होता है म्यूजिक का फ्री फ्लो, कहीं पर भी हो म्यूजिक के मजे लो।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: हर रात की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक साउंड ट्रैक। आज की रात का साउंड ट्रैक यही बज रहा है, बस साथ बना रहे, साथ देते रहे। पहला घंटा समाप्त होने को है, लेकिन अभी दो घंटे बाकी, बाकी अपनी मुलाकात।
4: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
5: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: आजकल की जनरेशन के लिए तो भाई जो 90s के गाने वो भी पुराने हो गए हैं, लेकिन कुछ गाने पुराने जरूर हो जाते हैं लेकिन उनसे जो यादें जुड़ी होती है ना वो कभी ओल्ड फैशन नहीं होती। कुछ गाने जो आपको अपना वक्त याद दिला दें, कोई भूला हुआ किस्सा याद दिला दें, या कोई चेहरा, अगर कुछ तो हुआ होगा ना, अगर है कोई दिल पर असर, तो चलते हैं उसी डगर जहाँ पर म्यूजिक ही म्यूजिक है।
1: Late Night Grooves.
2: RM2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: अगर सोशल मीडिया साइट में बात करें तो दोस्ती वो रिश्ता है जहां सीन या सीन SEEN का रिप्लाई ना आए फिर भी प्यार कम नहीं होता। ये गाना सभी दोस्तों के नाम जो एक साथ होकर जिंदगी में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और वक्त मिले तो बाहों में बाहें डाले ऐसी गुनगुनाते हैं।
1: Late Night Grooves.
3: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: आज अगर किसी को थैंक यू कहना है तो दिल ही दिल में कह दीजिए। कभी कभी शुक्रिया या फिर दो लव्स कहना किसी का पूरा दिन बना देता है।
3: Late Night Grooves.
0: RM2 Radio Musty.

0: अच्छा लगा
1: रहते हो
0: सच।

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: बॉलीवुड के खजाने में से ये खूबसूरत गाने लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। हर गीत जैसे कि एक नया मूड, एक नई कहानी और एक नया एहसास।
0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कई लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, इसलिए सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कभी कभी इम्परफेक्ट मोमेंट्स ही बेस्ट मेमोरीज बन जाते हैं, वो चीजें जो आपने प्लान नहीं की और बस हो गई। बस ऐसा लगता है कि काश वो मोमेंट कैमरा कैप्चर कर पाता। कोई बात नहीं, आपके दिल ने तो उसको सेव कर लिया ना, और वो भी हमेशा के लिए।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
1: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: लिए मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 Radio Musti
2: Hit Music Only
3: Radio Musti Feels a Musti

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: भाई बातें और गाने तो चल ही रहे हैं, लेकिन इन्हीं

0: बातों में और सफर में अब रात थोड़ी सी गहरी होती जा रही है, लेकिन हाँ ये म्यूजिक जो माहौल है ना अभी जवान है। जो लोग अभी तक साथ हैं उनके लिए पेश है सुरों का एक और नया रंग, एक और नया ढंग। बस मजा आएगा क्योंकि हम हैं संग संग।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: अक्सर कहते हैं सबसे खूबसूरत सपने वही देखते हैं जो मुश्किलों के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। तो बस अपने पे विश्वास कीजिए, अपने सपनों पर, अपनी मंजिल पर और हर उस छोटे कदम पर जो आपको अपनी मंजिल के और करीब और पास ले जा रहा है।
2: Late Night Grooves.
0: RM2 Radio Musty.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: ये रिश्ते भी बहुत कमाल के होते हैं ना, मोहब्बत हो या दोस्ती, रिश्तों का असली राज वक्त देता है। क्योंकि जहां वक्त होता है वहीं अहमियत होती है, और वक्त के साथ हर एक रिश्ता अपना टाइम का टेस्ट पूरा कर लेता है। बुरे वक्त में जो साथ दे जाए वही तो रिश्ता खास बन जाता है ना।
2: लेट नाइट ग्रूव्स RM2 रेडियो मस्ती।

0: FM 2 Radio Musti. Feel the Musti.
1: हमेशा आपने सुना होगा कि अपने आप से प्यार करना सीखें, पहले अपने आप को ऊपर रखना सीखें। अगर दुनिया आपको पसंद करेगी नहीं करेगी, इस सवाल से दूर जाइए। पहले खुद पर गर्व करना सीखें। आज अपने आप से एक कॉम्प्लीमेंट तो जरूर लेना होगा। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
2: Late Night Grooves.
0: RM2 Radio Musti.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: और अब वक्त इतनी इजाजत देता है कि आपका हमारे साथ यहीं तक रहे, आपके साथ ये म्यूजिकल सफर यादगार रहा। मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और कल फिर मिलने आ रहे हैं इसी टाइम पर 9 से 12 के बीच में नए गानों और नए जज्बातों के साथ। शुभ रात्रि।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Angel Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
5: You're listening to RM2, a Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mercy
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: जिस दिल

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: आई एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ,
0: फिर क्या बोली? बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी,
1: मतलब
0: मैं था,
1: तन्हाई थी।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।